FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है।

FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हाथ की चार उंगलियां भले ही अलग अलग हों, उनकी अपनी अपनी पहचान और विशेषताएं हों, लेकिन जब अंगूठा उनका साथ देता है तो हर काम आसान हो जाता है और मिलकर एक मजबूत मुट्ठी का रूप ले लेती है। इसी से हमें जीवन में एकता, सहयोग और प्रेम का भी संदेश मिलता है। इसी सुंदर भावना को बड़े ही सहज और मनमोहक ढंग से पिरोया गया है इस अगले भजन में। तो आइए लेते हैं आनंद इस भजन का।

तन को सुगंधित करने के लिए चंदन की आवश्यकता होती है, लेकिन मन को पवित्र, शांत और सुगंधित करने के लिए भक्ति का चंदन चाहिए। जब मन श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की सुगंध से महक उठता है तो जीवन का हर क्षण चंदन सा शीतल और पावन प्रतीत होने लगता है।

अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस, जिसके संगीत निर्देशक और निर्माणकर्ता हैं सतीश भाटिया। स्वर दिया है श्रीकांत परगामकर एवं रंजना जोगलेकर ने।

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य

शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं। कोयल कूक रही है। ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, जिसके संगीत निर्देशक एवं निर्माणकर्ता थे सतीश भाटिया, स्वर दिया था श्रीकांत परगामकर एवं रंजना जोगलेकर ने। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार 20 जून 2026।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अब एक नजर टुडेज अपडेट्स पर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त रूप से ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जयपुर शहर को दुनिया के टॉप 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में 18वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में लंदन सबसे पहले नंबर पर है और भारत का एकमात्र शहर जयपुर शामिल है।

0: बिमल एन पटेल को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी का नेशनल लीगल एक्सपर्ट चुना गया है। वे 2035 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो ये थी कुछ एक टुडेज अपडेट्स।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अब जानिए आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज दोपहर 3:55 पर सुनिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का सीधा प्रसारण, और शाम 5:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:30 पर और सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक।

6:20 पर श्रवण कीजिएगा गीता संदेश का। इसमें आज आप सुनेंगे छठे अध्याय के श्लोक 31 से 34 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र की।

शाम 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी और शाम 7 बजे समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम संसार का। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे। संगीत के आकर्षण में सुबह 7:10 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम दिल पुकारेगा।

कार्यक्रम स्वरांजलि पेश करेंगे सुबह 9:30 पर। शाम 5:30 पर सुनेगा कार्यक्रम युववाणी। शाम 7:30 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम जय जवान और 7

0: कर 45 मिनट पर पेश करेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम चांदनी रातें का आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे। तो ये थे आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश माघव। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves, Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to

दोस्तों, कार्यक्रम दिल पुकारे का आगाज हमने किया था फिल्म कयामत से कयामत तक के इस बेहद ही लोकप्रिय और सदाबहार गीत के साथ। ये गीत फिल्माया गया था आमिर खान और जूही चावला पर। गाया है इसे उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इसे संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे हमने लिया है फिल्म खामोशी से, और इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति एवं कुमार शानू ने। संगीत दिया है जतिन ललित ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और ये गीत फिल्माया गया है सलमान खान और मनीषा कोइराला पर।

चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं 90 के दशक के एक और बेहद लोकप्रिय गीत के पास, जो कि हमने लिया है फिल्म खूबसूरत से, और ये गाना अपनी मखमली धुन और शानदार गायकी के लिए जाना जाता है। तो चलिए आपको जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी भी दे दें कि ये गीत अब हम जो आपको सुनवाने वाले हैं उसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने, गीतकार हैं संजय छैल, और इस गीत को फिल्माया गया था संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर पर। तो फिल्म का नाम है खूबसूरत।

चलिए दोस्तों, अब आपको एक और बेहद ही लोकप्रिय और सदाबहार गीत से रूबरू करवाते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म साचन से। इस गीत में समीर के बोलों को नदीम श्रवण ने अपने संगीत से सजाया है और अलका याग्निक ने अपनी मधुर आवाज दी है। इस गीत को फिल्माया गया था माधुरी दीक्षित, सलमान खान और संजय दत्त पर।

और अनुराधा पौडवाल की सुरीली आवाजों में, जिसे हमने लिया था फिल्म तुम बिन से। इस गीत के बोल लिखे हैं फैज अनवर ने और संगीत दिया था निखिल विनय ने।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम दिल पुकारे का। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। इसमें आज आप सुनेंगे कुछ एक भजन जिन्हें गाया है उपासना दहिया ने।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो नीरोग। करो योग, रहो नीरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश

0: INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: We have been able to achieve that in the first.
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: They are all designed in India.

0: में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन का
0: बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत

0: और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुबली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. An immense cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors, including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashwani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road, and dedicate 3 indigenously built

सपनों को फिर से सजाने का नाम है ये, हर दिन को मुस्कुराकर अपनाने का पैगाम है ये, हर धड़कन में नई उमंग और नई ऊर्जा जगाने वाला आपका अपना कार्यक्रम सुबह सवेरे है ये। नमस्कार दोस्तों, आवाजों की इस खूबसूरत सी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती, आपकी रेडियो मित्र, और आप सुन रहे हैं ऊर्जा, सकारात्मकता और मधुर संगीत से सराबोर आपका प्यारा कार्यक्रम सुबह सवेरे, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र यानी एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। कहते हैं कि हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई संभावनाएं लेकर आती है, और इन्हीं उम्मीदों को सुरों की मिठास और विचारों की रोशनी से सजाने का एक छोटा सा प्रयास है हमारा ये कार्यक्रम। तो यहाँ सिर्फ गीत नहीं बचते, यहाँ उम्मीदें जागती हैं, यहाँ विचारों को मिलती है नई दिशा और हर पल जिंदगी को मुस्कुरा कर जीने का एहसास मिलता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सुरीले सफर के लिए जहाँ होगा सदाबहार गीतों का जादू, सकारात्मक विचारों की खुशबू, रोचक जानकारियों का उजास, और सबसे बढ़कर आपका और हमारा खूबसूरत साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसका आप कर रहे थे इंतजार।

बिल्कुल दोस्तों, इंतज़ार तो हम बहुत सी चीज़ों का करते हैं, और लेकिन हम जानते हैं कि आप घड़ी में 8:30 बजने का इंतज़ार बड़ी ही बेकरारी से करते हैं, और साथ ही साथ जब घड़ी में 8:30 बजते हैं तो 8:30 बजने पर जो कार्यक्रम शुरू होता है ना सुबह सवेरे, उसमें आप बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सवाल का। जी हाँ, तो आपका इंतज़ार हम ख़त्म करेंगे और आपको बहुत ही जल्दी आज का सवाल भी बताएंगे। दोस्तों, बदलते समय के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी करती हैं, जिनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, पर्यावरण, उत्सर्जन से जुड़े रुझानों का आकलन किया जाता है। इन्हीं में से एक है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट, जो ऊर्जा क्षेत्र से होने वाली मीथेन उत्सर्जन और उसे कम करने की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। तो इसी संदर्भ में हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है। आज आपको संगठन का नाम बताना है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आज आपको बताना है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। इस सवाल का जवाब आपको भेजना है SMS के द्वारा हमारे फोन नंबर 9466021336 पर 8:45 तक। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक SMS में सिर्फ 3 ही नाम हो, सही जवाब हो और सही समय तक हमारे पास जो है आपके नाम, आपका SMS पहुंच जाना चाहिए, तो ही हम आपके नाम कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। और अब चलिए, ये मत कहिएगा कि पूछिए हमसे आज का सवाल, क्योंकि हम आपसे पूछ चुके।

0: अरे भाई साहब,
1: ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
2: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
2: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
2: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
3: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
4: ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर
7: हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
10: RBI कहता है,
11: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
12: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
13: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
12: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
13: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
12: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
14: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
15: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
14: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
16: दोस्तों, महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान भी है। इसके 8 अंगों में है धारणा, ध्यान और समाधि। जी हाँ, आज हम इसके जो अष्टांग योग के जो 6ठा, 7वां और 8वां हिस्सा है उसके बारे में बात करेंगे। यानी हम बात करेंगे धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में। धारणा, ध्यान और समाधि को योग साधना की सर्वोच्च अवस्थाएं माना गया है। धारणा अष्टांग योग का 6ठा अंग है। इसका अर्थ है मन को किसी एक लक्ष्य, विचार, मंत्र या बिंदु पर स्थिर करना। जब बिखरे हुए विचार एक दिशा में केंद्रित होने लगते हैं तो धारणा का आरंभ होता है। यह एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता का आधार है। फिर बात करते हैं ध्यान की। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। जब मन बिना किसी व्यवधान के निरंतर उसी लक्ष्य पर प्रवाहित होने लगे तो वह ध्यान की अवस्था कहलाती है। ध्यान मन को शांति प्रदान करता है, तनाव को कम करता है और व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है। फिर बात करते हैं समाधि की, जो कि अष्टांग योग का 8वां अंग है और अंतिम अंग है। ये वो अवस्था है जहां साधक, साधना और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। मन पूर्णतः शांत और चेतना परम आनंद में विलीन हो जाती है। योग दर्शन में इसे आत्मबोध और परम सत्य की अनुभूति का मार्ग माना गया है। योगाचार्यों के अनुसार मन को एक स्थान पर ठहराना धारणा है, उस ठहराव का अखंड प्रवाह ध्यान है और जब साधक स्वयं को भूलकर उस अनुभव में लीन हो जाए वही समाधि है। इसीलिए कहा गया है, धारणा से एकाग्रता, ध्यान से आंतरिक शांति और समाधि से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यही अष्टांग योग का सार है, जो व्यक्ति को बाहरी जगत से जोड़ने के साथ साथ उसके अंतर्मन की अनंत संभावनाओं से भी परिचित कराता है। तो ये हुई बात अष्टांग योग के बारे में।
17: एक लड़की थी दीवानी सी, सिर्फ यही।
18: आहो

0: भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस

0: यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
6: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
5: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
7: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
8: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: चलिए दोस्तों, अब शामिल कर लेते हैं आप सभी के नाम जिन्होंने दिया है आज के सवाल का सही जवाब। तो सबसे पहले हम नाम शामिल कर रहे हैं जो कि है रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी। योगी मोहल्ला बराड़ा अंबाला से हमारे साथी हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजनन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। हम अपने श्रोताओं से बार बार ये निवेदन करते हैं कि SMS सिर्फ एक ही बार भेजें और एक ही नंबर से भेजें, अलग अलग नंबर से आप बार बार SMS ना करें। अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं आगली दीवान मध्य प्रदेश से भाद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी। धाने कुतुबपुर हांसी से हैं रामधारी अवाना, अनाया, ओजस अवाना। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति, यह है खमरिया छत्तीसगढ़ से। सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। टिया कृष्णा है सोलन हिमाचल प्रदेश से। मोटला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला। विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, ये है फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं, अच्छा माफ कीजिएगा इनका जवाब गलत है तो इनका नाम तो नहीं शामिल कर पाएंगे। फिर है जी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। पीपरलोड सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, ये हमारे साथी हैं राहुल नगर अमरावती से। उमेश सांगवान, यह है पैंतावास कला चरखी दादरी से। रणधीर बांगर, युगम नागल और इंद्रराज, ये हैं जगुड़ी से। उसके बाद है जी शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर और प्रियांशी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हर्षित। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू और सुरेश। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाविया और इनके साथी हैं MLB रोड ग्वालियर से। फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हेयंश कुमार चंदन, यह है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, ये हैं पाकुड़ झारखंड से। राजाजी नगर बेंगलोर से हैं एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा है बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर, ये हैं गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से। मुरादाबाद दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान और नरगिस खातून। संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। कुरुक्षेत्र से हैं गौतम। एक और जवाब हमारे पास गलत आया है, देखिए हम आपको सही जवाब जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे कार्यक्रम के साथ। और सुनीता सैनी, रत्नी देवी, पृथ्वी सिंह सैन, ये है फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से, इन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया। अगला जवाब, सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं लाडवा से चांद ढींगरा, ईशू और एहमी। फिर हैं जी बुल्ढाना वडशिंगी से अमोल मानकर और बुल्ढाना इस्लामपुर से सहदेव दामोदर। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और इनके साथ हमारे साथी हैं, देखते हैं कौन है।

जी हाँ, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, ये हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। बीपी गौतम, सरिता गौतम, ये हैं एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। नागर कोहरा से हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे साथी हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और समस्त छाबड़ा परिवार। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया और कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा। कल्याण मुंबई से हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज वीर अबारी। माघीराम सैनी, पूनम सैनी, यह है प्रतापगढ़ कुरुक्षेत्र से। फिर है जी बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी। सांतड़ी से हैं ईश्वर दयाल काम्बोज, लाजवंती काम्बोज, भव्य काम्बोज। रवि और इंद्र हैं रानीगंज बंगाल से। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला हुजरे और सबाहत हुजरे। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार साहू। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से हैं विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे और मायरा सुरोशे। सज्जन जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा है नलोई हिसार से। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, ये हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, तुलसी मस्कीन। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा। पुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, विनय पांडे, विनय शंकर पांडे। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से हैं सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी, लाडी। शनि मंदिर चौक खंडवा से हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी, अनिता सैनी। बम्बलेश्वरी धाम सांकरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, मिलिंद कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर, ये हमारे साथी हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी और लवली। रादौर से राजकुमार पुजारा, अनिता पुजारा, साहिल पुजारा। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से हैं तुलसी मस्कीन।

रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, माधुरी किरण। रेलवे रोड गंजडुनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और फातिमा गाजी। बड़वाहा मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण श्रीमाली और आनंद जोशी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, विशाल सपकाल। बिलराम गेट काशगंज से हैं एम असलम सैफी। मदनपुर कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। प्रवीण गुजराती, जगदीश गुजराती और हिरेन भाई ये हैं सौराष्ट्र राजकोट से। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, लड्डू कुमारी, नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा ये हैं खैल बाजार पानीपत से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से हैं। मोहम्मद जाहिद अली सैफी, जोहान सैफी, लीवा मलिक, आबाद खान ये हैं छप्पर वाली मस्जिद काशगंज से। गंजडुनवारा से शाहीन फातमा, अनु बड़जातिया और शमसुल खान। सेक्टर दो आवास विकास काशगंज उत्तर प्रदेश से हैं पवन गौड़, सुयश गौड़ और आशीष गौड़। बनभगेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा। वीरमगाम गुजरात से हैं अजीत कुमार भावसार, प्रवीला भावसार और प्रवीण सुल्ताना। जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ ये हमारे साथी हैं हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छेम्पा, कपिल छेम्पा, पूजा परिहार। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज ये हैं गिरिडीह झारखंड से। सादुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से, विनोद खट से। अगला फिर एक और जवाब हमारे पास गलत आया है। सही जवाब हमें भेजा है सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश और कुश गौतम ने साईपुर रामपुर से। भुवन प्रकाश गौतम, श्रेय गौतम ये हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। सुधा नारायण के हाली हैं बेंगलोर से। कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन योगेश, युद्धव कड़वासरा। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस रेहान। बंसीलाल ये हैं तेजा मोड़ी से। गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और हिमाक्षी ये हैं सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से। एक और जवाब हमारे पास गलत आया है और फिर है जी सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से संजीव स्वामी जिन्होंने सही जवाब दिया है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और स्मस बत्ता परिवार। कुरमा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी। नारायण हागे और जय हागे हैं बुलढाना महाराष्ट्र से। और छत्तीसगढ़ से है फातिमा थापा, सोनम थापा, आसमा थापा। तो लीजिए हम बहुत सारे नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं, चलिए 4 नाम और हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल ये हैं बालोदा छत्तीसगढ़ से। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़ से, विनोद खड़ से। आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से। और हैं जी मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाह नवाज, सरफराज अब्बासी, समस्त अब्बासी परिवार जो कि है ऊपरकोट बुलंदशहर से। तो लीजिए हमारे सभी साथियों के नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया है। और अब बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ जिसका आप और हम आनंद लेंगे मिलकर।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मंगल भवन मंगलहारी।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
5: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
5: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
4: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
5: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
4: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
6: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

दोस्तों अब बारी है आज के सवाल का जवाब देने की। जी हाँ, आज हमने आपसे पूछा था कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और दोस्तों, जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि मीथेन गैस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मीथेन एक ऐसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। इसी विषय पर हर साल ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट जारी की जाती है, और ये रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में ऊर्जा क्षेत्र से होने वाली मीथेन उत्सर्जन का आकलन करना और उसे कम करने के उपायों पर प्रकाश डालना है। इस रिपोर्ट में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से होने वाली मीथेन उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इन उत्सर्जनों को काफी हद तक कैसे कम किया जा सकता है। वर्ष 2026 में रिपोर्ट के अनुसार मानव गतिविधियों से होने वाले कुल मीथेन उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40% है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ही मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वैश्विक तापमान की वृद्धि की रफ्तार को कम करने में मतलब ये कि अगर मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वैश्विक तापमान वृद्धि की रफ्तार को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार और ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट न केवल पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को समझने में सहायक है बल्कि ये दुनिया को एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने का भी मार्ग दिखाती है। तो ये हुई बात हमारे आज के सवाल से संबंधित जानकारी की, यानी कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट के बारे में। और अब हम चलिए सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

दोस्तों अब बात करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका घर होता है, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि अपने ही घर आंगन को छोड़ना पड़े तब सबसे अधिक जरूरत होती है सुरक्षा, सहारे और संवेदनाओं की। मानवता का यही संदेश हमें विश्व शरणार्थी दिवस की ओर ले जाता है। दोस्तों हर साल 20 जून को पूरी दुनिया विश्व शरणार्थी दिवस मनाती है। ये दिन उन करोड़ों लोगों की अदम्य साहस, संघर्ष और आशाओं को समर्पित है जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, मानवाधिकारों के उल्लंघन या अन्य संकटों के कारण अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में इस दिवस की घोषणा की गई थी और वर्ष 2001 में इसे वैश्विक स्तर पर मनाया गया। इस अवसर का उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष इसकी थीम है द राइट टू सीक सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा पाने का अधिकार। और इसका संदेश है जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तब तक हमारा कार्य अधूरा है। इस विषय पर इस बात को रेखांकित, ये जो विषय है ये

बात को रेखांकित करता है कि सुरक्षा की तलाश करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और शरणार्थियों को संरक्षण प्रदान करना पूरी दुनिया की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त आज विश्व भर में करोड़ों लोग जबरन विस्थापन का सामना कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। अपने घरों से दूर ये लोग न केवल सुरक्षित आश्रय की तलाश में है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी अपेक्षा रखते हैं। इतिहास गवाह है कि संकट की घड़ी में मानवता और सहयोग की भावना ही समाज को आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र और अनेक देश शरणार्थियों के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शरणार्थी केवल आंकड़े नहीं है बल्कि वे भी हमारी तरह सपने देखने वाले, उम्मीदों से भरे हुए इंसान हैं। उनकी कहानियां संघर्ष की हैं लेकिन उनमें साहस, धैर्य और नए जीवन की आशा भी छिपी हुई है। तो चलिए हम भी इस अवसर पर यह संकल्प लें कि मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और सहयोग की भावना को और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि एक सुरक्षित, समावेशी और संवेदनशील समाज का निर्माण तभी संभव है जब हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अवसर मिले। और अब इसी के साथ अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत, कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न करने की। और आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

कार्यक्रम स्वरांजलि में स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ आरती आपकी रेडियो मित्र। तो चलिए दोस्तों करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत पंकज उधास की इस प्यारे से गीत के साथ।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
4: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
5: मंगल भवन मंगल हारी।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
7: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का

0: प्रधान, अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
4: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
7: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
8: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
7: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
8: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
4: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
9: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
10: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज, अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
9: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
10: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
11: इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त आरती को इजाजत। नमस्कार। सुबह के 9:45 हुए हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
12: लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह प्रवेश।

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

0: 20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।
1: लड़कपन खेल में खोया।

0: जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे विविध भारती से रिले किया गया था। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की पेशकश नमस्ते कुरुक्षेत्र में, और मैं हूं आरती, आपके रेडियो मित्र। तो दोस्तों, चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और शुरुआत कैसे, एक गीत के साथ। लेकिन गीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बता दें कि ये कार्यक्रम है कैसा। जी हाँ, ये है सजीव फोन इन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आपको करनी होती है हमें फ़ोन कॉल्स, ताकि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, अपने विचार, अपने पसंद का गीत और कोई संदेश साझा कर सके, है ना। तो इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा दूरभाष नंबर 0174-221-322 नंबर। एक बार फिर से सुन लीजिए, 0174-221-322। तो अब देर है किस बात की, चलिए हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत, और देखते हैं कि अगला गीत कौन सा होगा और कौन से हमारे श्रोता होंगे। तो जल्दी से डायल करें हमारा दूरभाष नंबर

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों, हमारे साथ फोन पर एक हमारे श्रोता थे, लेकिन किसी वजह से उनकी कॉल कट हो गई है, उनसे बात नहीं हो पाई। पर हमने उनकी पसंद का गीत जान लिया था और उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन है, तो हम उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए ये गीत हम उन्हें सुनवा रहे हैं उनकी पसंद पर।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
1: हाँ जी नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार मलेर टोडला पंजाब से बात कर रहा हूँ जी।
0: जी राकेश कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: आवाज तो बहुत कट आ रही है, बहुत ज्यादा।
0: कम आ रही है? मैं तो
1: हाँ
0: बहुत
1: अब ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोले हो ना। अब ठीक है जी। अभी
0: अच्छा ठीक। और क्या कर रहे थे अभी आप?
1: फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जी।
0: अच्छा, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो
1: हाँ
0: काम
1: जी
0: करते करते वहां पे गाने सुनने की परमिशन है?
1: हाँ जी हाँ, पूरी परमिशन है जी। फिल्म
0: चलिए अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: है जी, आए दिन बाहर के ये कली कब तलक फूल बनते के लिए। धन्यवाद
0: चलिए ठीक है, आपकी पसंद को पूरा कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, आपका भी कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

दोस्तों, अब जानकारी आपके साथ साझा करते हैं प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाया गया एक बड़ा कार्यक्रम है ये, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होती है। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध धर्म शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षिक सशक्तिकरण, रोजगार पाने के लिए कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं जैसे नया सवेरा, नई उड़ान, पढ़ो प्रदेश, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत गरीब नवाज रोजगार व बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीखो और कमाओ योजना, उस्ताद योजना, नई मंजिल कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्प

0: संख्यक विकास वित्त नियंत्रण ऋण योजना भी है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र अवसंरचना सहायता और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक आर्थिक संरचना प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये हुई बात अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में। और अब चलिए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन से हैं। हेलो
1: मैम, जय श्री महाकाल
0: जी। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैम शिवा लोहा एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी शिवाजी, विदिशा मध्य प्रदेश से हमसे बात कर रहे हैं, जुड़े हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई विचार साझा करना चाहेंगे?
1: मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए
0: जी,
1: और रक्तदान करने से कोई वीकनेस नहीं आती है और ये मानवता की असली निशानी है। और वर्षा ऋतु चल रही है तो पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत आपने दो संदेश हमारे साथियों को दिए हैं। और एक तो ये कि रक्तदान करें, ठीक है, जब कहीं पर भी। हेलो शिवा जी, आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है, तो आप जो भी, अगर आपके पीछे रेडियो या टीवी चल रहा है तो उसकी आवाज कम कर लें।
1: जी मैम, मैं समय समय पे हर 3 महीने में देता रहता हूँ रक्तदान
0: जी। गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप? हेलो हेलो शिवा जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम मूवी का नाम है दिल कितना नादान और गाने के बोल है आएगी बरसात कहाँ जाएंगे, कुमार सानू अलका याग्निक।
0: चलिए, आपकी पसंद को हम पूरा करते हैं, सुनवाते हैं आपको ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, शिवाजी ने बहुत ही अच्छा संदेश हम सबको दिया है कि हमें रक्तदान करना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी जब रक्त शिविर लगे हों या फिर ब्लड बैंक में जाकर भी हम किसी भी अस्पताल में जाकर हम अपना रक्तदान जो है वो कर सकते हैं। रक्तदान से पहले कि कुछ एक ज़रूरी टेस्ट होते होंगे, जैसे हमारा कितना खून है, कितना HB है हमारे अंदर, वो चेक करवाकर ही हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो अगर किसी कोई भी व्यक्ति जो रक्तदान के जो भी नियम है उनको पूरा करता हो तो उसके बाद वो अपना रक्तदान ज़रूर कर सकता है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि हमें पेड़ लगाने हैं, तो पेड़ इसलिए लगाएं ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे। पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो अब हम चलिए सुनते हैं इनके पसंद का गीत जो इन्होंने हमें हमसे फरमाइश की है।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
3: मेरा नाम संजीव कुमार है मैडम।
2: संजीव कुमार जी, क्या करते हैं आप?
3: मैडम हम सिलाई का काम कर रहे हैं जी।
2: सिलाई का काम करते हैं?
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: कहाँ से हैं आप?
3: कुरुक्षेत्र से।
2: कुरुक्षेत्र से ही है। कब से

0: रहे हैं हमारे कार्यक्रम?
1: काफी साल हो गए जी मैडम, मन नजर सुन रही।
0: अच्छा, काफी सालों से सुन रहे हैं। ठीक, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कोई माता की भेंट भूट सुना दो।
0: भेंट आप सुनना चाहते हैं, तो जाग उठा इंसान फिल्म का सुनवा दें आपको?
1: हाँ जी सुना दो कोई।
0: चलिए ठीक है, आपकी पसंद को पूरा करते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है जी।
0: Thank you.

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों अब बात करते हैं DRT के बारे में, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में। दोस्तों जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से ऋण लेती है और निर्धारित समय पर उसका भुगतान नहीं कर पाती तो बैंक के सामने ऋण की वसूली की चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे मामलों में त्वरित निपटारे के लिए भारत सरकार ने सन 1993 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋणों की वसूली अधिनियम के तहत डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT की स्थापना की थी। वर्तमान में ये व्यवस्था जो है वो रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 के अंतर्गत संचालित की जाती है। DRT एक विशेष न्यायाधिकरण है जिसका मुख्य उद्देश्य बैंक और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा करना होता है। अब बात करते हैं इसके काम की कि ये क्या काम करती है। तो सबसे पहला काम है इसका बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर किए गए ऋण वसूली संबंधी मामलों की सुनवाई करना, ऋण की राशि और उससे जुड़े तथ्यों की जांच करके ये उचित आदेश जारी करता है। फिर अगर ऋण लेने वाला पक्ष भुगतान नहीं करता है तो DRT के आदेश के आधार पर रिकवरी अधिकारी संपत्ति की कुर की नीलामी या अन्य वैधानिक उपायों के माध्यम से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत भी बैंकों द्वारा की गई कुछ कार्यवाही के खिलाफ भी प्रभावित व्यक्ति DRT में अपील कर सकता है। और यदि किसी पक्ष को DRT के फैसलों से संतुष्टि नहीं होती तो वो डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी DRAT में अपील कर सकता है। दोस्तों DRT का उद्देश्य केवल ऋण की वसूली करना ही नहीं है बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना और वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना भी है। इससे बैंकों को अपनी धनराशि वापस मिलने में सुविधा होती है और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। तो ये हुई बात डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT के बारे में। और अब चलिए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम बताएं।
3: जी नमस्कार
2: जी, नाम बताएं आपका।
3: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर तहसील
2: जी। कैसे हैं आप
3: जी? हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
2: बिल्कुल बढ़िया जी। आपके यहाँ मौसम कैसा हो रखा है?
3: मौसम अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन बारिश से खुशनुमा मौसम है।
2: क्या बारिश हो रही है या नहीं हो रही?
3: अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत गिर जाता है, टेम टेम बारिश हो जाती है कभी कभी।
2: अच्छा, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बौछारें आ जाती हैं।
3: जी जी,
2: ठीक ठीक। तो
3: और आपके इधर कुरुक्षेत्र में कैसा मौसम है, कैसी बारिश हो रही है आपके इधर?
2: यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रही, यहाँ तो तेज धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी है अभी तो यहाँ पर।
3: जी जी
2: हाँ जी,
3: कहूँ कहूँ तो बारिश हो रही है, कहूँ कहूँ बारिश नहीं हो रही, कहूँ कहूँ की उमस है।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, मौसम है हर जगह का अलग होता है, हर जगह की जलवायु अलग होती है। आज आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे? हेलो
3: जी।
2: हाँ जी हारून जी, गीत बताएं कौन सा सुनेंगे?
3: उड़ान का सुनवा देना।
2: उड़ान फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं?
3: जी, बादल गरज बिजली चमकी होने लगी बरसात।
2: चलिए ठीक है, आपकी पसंद को पूरा करते हैं, सुनवाते हैं आपको ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद
3: जी। धन्यवाद आपका।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, अब बात करते हैं नई नई चीजों को सीखने में रखे रुचि विषय पर। देखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हर दिन कुछ नया सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जिज्ञासा से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। जी हाँ, दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और ज्ञान के नए द्वार खुल रहे हैं। ऐसे समय में सबसे आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सीखने की अपनी आदत को कभी नहीं छोड़ते। सोचिए, अगर पेड़ बढ़ना बंद कर दे तो वो सूखने लगता है, ठीक उसी तरह अगर इंसान सीखना बंद कर दे तो उसका विकास भी रुक सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सीखना केवल एक ज़रूरत नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। नई नई चीज़ें सीखने का मतलब केवल बड़ी डिग्रियां हासिल करना नहीं है, ये एक नई भाषा सीखने से लेकर किसी वाद्य यंत्र को बजाने या नई तकनीक को समझने, किसी पुस्तक से नया विचार प्राप्त करने या फिर अपने आसपास के लोगों से कुछ अच्छा सीखने तक हो सकता है। दरअसल हर नई जानकारी हमारे व्यक्तित्व में एक नया रंग जोड़ती है। इससे न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है। यही कारण है कि जो लोग सीखते रहते हैं वे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को आसानी से ढाल लेते हैं। आज इंटरनेट और डिजिटल युग ने सीखने को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। एक मोबाइल फोन और सीखने की इच्छा के साथ पूरी दुनिया का ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है, लेकिन ज्ञान का लाभ तभी है जब उसके प्रति हमारे मन में उत्सुकता और खुलेपन का भाव हो। दोस्तों, असफलता से घबराकर सीखना छोड़ देना कभी समाधान नहीं होता। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। वास्तव में सीखने वाला

व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वह हर अनुभव से कुछ नया हासिल कर लेता है। तो आइए हम भी अपने आप से ये वादा करें कि हर दिन अपने जीवन में कुछ नया जोड़ेंगे, शायद एक नया शब्द, एक नई जानकारी, एक नई कला या फिर कोई नया अनुभव। क्योंकि जो व्यक्ति सीखने में रुचि रखता है उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो इसी के साथ अब दीजिए अपनी दोस्त आरती को इजाज़त, और आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com। और अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।

0: फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यही

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे वेद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय?
1: थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकालें तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी।
0: जी तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
0: जी
1: से रिलेटेड।
0: हाँ,
1: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सिटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
0: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? भ्रामरी, शीतली
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, वस्त्रिका करके अपने फेफड़े
0: सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
1: कपालभाती,
0: सबसे पहले
1: कपालभाती
0: जी,
1: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
0: इतने सारे कर रहे हैं।
1: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
0: अच्छा,
1: ये पूरा पैकेज हो गया
0: जी।
1: ये
0: जी, जी।
1: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
0: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
1: जी,
0: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
1: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
0: जी,
1: कपालभाती से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
0: अच्छा,
1: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
0: अच्छा,
1: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं
0: जी जी,
1: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है
0: जी,
1: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
0: जी।
1: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तक जग भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है। तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: अच्छा।
1: जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते हैं, जैसे इंजन में व्हील ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है
0: जी।
1: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
0: अब देखिए ना, हम रेडियो पर हैं तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है, करके दिखा नहीं सकते, पर भ्रामरी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों से आंखों को
1: बंद करते हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है
0: जी,
1: मुंह बंद रखना है, पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
0: जी,
1: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना, बटरफ्लाई की तरह।

0: जी, और उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है, तो प्राणायाम की बात हुई, ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है
1: जी।
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12, 25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी,
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना
0: जी,
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से, 12 राइट लेग से, तो एक राउंड आप पहला दिन करिए।
0: अच्छा,
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए,
1: बढ़ाते जाइए।
0: नहीं, कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: ये सही कर रहे हैं जी। तो जोश में आकर होश नहीं खोना है,
0: बिल्कुल।
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
0: जी,
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है
0: जी। सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
1: देखिये, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
1: जी जी जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी,
1: हाँ। तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है, इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम जो सूर्य नमस्कार किया जाता है वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता है जी।
1: ये
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात है
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं।
1: और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी,
1: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब से,
0: और आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके अनुसार
0: बाकायदा ईमानदारी से बताना है।
1: जिनकी एज ज्यादा है उनको ध्यान में रखना है।
0: मैं वही पूछने आ रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी,
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं
0: जी।
1: क्यों कर लेते हैं? कि वो शुरू से ही
0: नियमित रूप से करते आए हैं,
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज

0: वो अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन जो अभी नए हैं जिन्होंने कभी किया नहीं तो उनको बहुत ही ध्यान में रखकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
1: जी मैं समझ गया
0: जी।
1: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
0: कोई भी चीज इसमें ऐसा मनाही नहीं, लेकिन हर योग को कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु की सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है पहले। कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उस बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं, लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
0: जी।
1: और दिन दिन भर बैठे हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
0: देखिए ऑफिस वर्कर्स ही नहीं
1: जी,
0: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं, सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं, तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है। जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है, तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
1: जी
0: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत ही
1: आपने इस तरह से वर्गीकरण कर लिया जी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के योग स्वस्थ रहे तय कर लिया
0: जी।
1: अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं।
0: जी, जी।
1: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति, और जब से कोरोना का समय आया
1: जी
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह। अच्छा एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते हैं
0: जी जी,
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाएं पिएं, कैसे जिएं कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके।
0: जी, रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: और संभव नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
1: कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं,
0: हाँ, पांच साल में, दो साल में, हाँ, इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा
1: जी।
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है
1: जी।
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां मेनू की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल, तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी
1: स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पे हो,
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन
1: जी।
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है
1: जी,
0: मस्तिष्क से ही
1: जी।
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे, तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया, तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं
1: जी। आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे अभी भी हैं, हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं
1: जी,
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहां स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है
0: जी,
1: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगी राज हूँ, तो हमारे जो

0: छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है लैपटॉप स्क्रीन का जो जमाना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपनी लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उससे हमें क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है
1: जी। एक और बहुत ज़रूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियाँ हैं
0: जी,
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं
0: जी,
1: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है, ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नज़रअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है, और रही बात उनको खुद की अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति हैं, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि इतना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं तरह तरह के,
1: मन भी कई बार अशांत रहता है,
0: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन।
1: और क्या महिलाएँ सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं
1: जी,
0: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं,
1: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज़्यादा अच्छा है।
0: हाँ, सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है
1: जी,
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है
1: जी,
0: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे, पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं,
1: मतलब हर साल 21 जून को करते हैं
0: 21 जून को साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
1: हाँ,
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
1: हाँ,
0: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं
1: जी।
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें
1: जी,
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
1: और अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे
0: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
1: जी।
0: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे। अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भी?

0: गा जिसमें ये शकील अपना जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था। एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुंझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाद दोपहर हुगली जिले के तारेश्वर से 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली जाएगी। 23वीं किस्त में 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में एक समारोह में

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गुरुग्राम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि तथा गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री के संबोधन और राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों, नियुक्ताओं और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रोत्साहन राशि वितरण से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग और श्रम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कुशल श्रमिकों की भागीदारी से औद्योगिकी की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोजगार आधारित विकास मॉडल और विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा में आज से 22 तारीख के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले।

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे हैं, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए, और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता करते हैं, लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं, या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नज़रें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

जापानी लग। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफ़र में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मज़े किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है गर्मी भी होती है लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज़ हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार

देश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो वो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियाँ हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बारा खंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था, और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफ़र तय किया अनुराधा के संग। इजाज़त चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में

0: बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे

0: न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार NEET UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा आकाशवाणी FM गोल्ड 100.4।

0: 1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाईब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: जाने

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मंतर फेरू कोमल काया छोड़ के डारे

0: लता मंगेशकर मन्नाडे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमति फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400909,

ये प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: रात कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत

सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा, बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और भैया झूठ मूठ। चली ही जाओ अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश।
0: हाँ?
1: आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी। हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुडू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ?
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
3: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ जाओ जाओ।
3: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मोलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
3: ओह।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या उठपटांग बके जा रहा है।
0: उठपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है, हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं
2: वासी।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई। हाँ? पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: वाह वाह क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
2: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
2: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
2: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
2: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
2: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
2: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
2: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
2: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौक चौक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा

0: ना हिम्मत से फूल उठता है जिन्हें।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिन्हें हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही हैं।
1: अच्छा तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
2: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है, जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: चरित्र। विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ चलाकर राख का डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापरकर।
2: नमस्कार।
1: बेंस, अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू, पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी।
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: जाने, वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापरकर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है? अरे ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयांगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है,
2: क्या हुआ? ओ लगता खून,
3: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
4: पुलिस ने।
3: पुलिस ने?
4: ईश्वर, यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओह, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
4: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
3: बांधो, बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयांगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
4: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
5: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू, बाबू दरवाजा जरा देर से खोलना।
5: अच्छा, आता हूं, आता हूं, आता हूं।
6: हैंड्स अप।
2: आप लोग
6: जुलूम अंदर देखो, ये जल्दी क्विक, कहां जा रहे ये सब?
7: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
5: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर, लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, जेम्स पिस्से।
8: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
5: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
5: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
7: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
8: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
7: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
8: मिल गया सर।
7: क्या मिल गया?
8: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
7: यू आर राइट
8: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
7: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया? समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
5: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर।
2: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
7: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
5: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुसा।
9: मोदी पश्चिम बंगाल, जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
10: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
11: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
10: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
11: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and gram panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous training of the next, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
10: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
11: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, we as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop, we have to make a Viksit Bharat till 2047, that's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District, gram panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, This promise never loses its importance.
10: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: nationwide. In Delhi, a mock drill was conducted at examination centers in the Delhi Cant area and Ashok Vihar Phase 2. The NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.7 lakh 9 candidates. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाग के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a sony ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years. During the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता

0: तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य संगीत कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate,

0: again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है, और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू हैव यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज सशक्त बनाना, दैट इज टू मेक द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एम्पावर्ड। हाउ डू यू मेक देम एम्पावर्ड एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल इंडिया मिशन। बिकॉज imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya, how important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया

0: विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई, वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को

क्यों? जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत

का लाभ मिलना तय हो गया है। माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है।
आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जारगाम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का
सबसे बड़ा आधार है।

0: पूर्वी भारत का विकास, इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त का सीधा प्रसारण। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है।

श्रोताओ, शाम के 5:33 होते हैं। अब से लेके रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम लीजिए। अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद युवा दोस्त सुनेंगे अपने मनपसंद कार्यक्रम युवाणी और शाम 6:20 पर डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र से सुनिएगा आज का गीता संदेश। आज इसमें सुनिएगा श्लोक 31-34 की व्याख्या। कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे किसान भाई शाम 6:30 पर और ग्राम संसार शाम ठीक 7 बजे से। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान का समय रहेगा 7:30 और कुछ गैर फिल्मी रचनाओं का आप आनंद ले सकते हैं शाम 7:45 पर कार्यक्रम गुलदस्ता में। फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत रात्रि 8 बजे से और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें रहेगा रात्रि ठीक 10 बजे से। विविध भारती के कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकेंगे रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा आपके लिए। फिल्म संगीत का दूसरा कार्यक्रम छाया गीत होगा रात्रि 9:30 से। तो ये थी आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोता दोस्तों लीजिए अब सुनिए एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना। 19 जून 2026 को एक नौजवान जिसका नाम पता ना मालूम है, उम्र उनकी करीब 45 वर्ष है, जिनकी लाश लावारिस लाश थीम पार्क कुरुक्षेत्र के पास डिवाइडर के पास सड़क पर लावारिस अवस्था में मिली है, जिनका नाम पता कुछ मालूम नहीं है। इनकी लाश 72 घंटे के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र के मोर्चरी यानी के शव गृह में रखी गई है और इनका हुलिया इस प्रकार से है। रंग सांवला, लबूतरा चेहरा, कद 5 फुट 7 इंच और उम्र इनकी 45 वर्ष है। इन्होंने लाल रंग की टी शर्ट और लाल रंग की पैंट पहनी हुई है। अगर आप इनके बारे में कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप इन फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर इस प्रकार से हैं, प्रबंधक अफसर कृष्णा गेट चौकी पुलिस चौकी थानेसर में फोन नंबर है 7056700123। दूसरा फोन नंबर है इंचार्ज पुलिस चौकी सुभाष मंडी कुरुक्षेत्र, फोन नंबर है 7056700124। अनुसंधानकर्ता यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एएसआई संदीप कुमार जी का फोन नंबर है 9729683280। मुंशी पुलिस चौकी सुभाष मंडी का फोन नंबर है 7056700824। सूचना समाप्त हुई।

0: कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले युवा शक्ति को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको इस कार्यक्रम में कुछ जानकारियां देंगे और आपका करवाएंगे स्वस्थ मनोरंजन। तो आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले कुछ विज्ञापन।
1: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
2: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
2: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
2: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
3: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
7: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
6: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
8: मंगल भवन
9: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत, फिल्म थी सनम तेरी कसम।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
6: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
8: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना

0: चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
1: 8708903436।
2: आशा भोसले की आवाज में कार्यक्रम का दूसरा गीत फिल्म है लूटमार।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
4: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्ज्वल करियर बनाने के लिए और प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
0: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।

बेटो हो जाने दो, आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा होना है जो वो

बच्चों का दीवाना दीवाने को समझाने दो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले करेंगे। तो अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the Prime Minister arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the state's day. Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. The Prime Minister will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata tomorrow, designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. The vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur of worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major centre of faith for devotees from across the country. Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan reviewed the organizational preparations of the BJP in Goa during the party's State Executive Committee meeting held in Panaji today. Addressing party workers, Murugan stressed the importance of ensuring that central government schemes reach every eligible citizen. He called for further strengthening of the party organization across all 40 assembly constituencies in the state. The government has banned the manufacture

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। 9,44,00,000 किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल और हथीन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत देश भर में मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी। और हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकूला में होगा। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में प्रायोगिक अभ्यास किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। मैं देख के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता।
0: 23वीं किस्त में 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस उपलक्ष्य में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान की छोटी छोटी चिंताओं का भी हल हो।
2: मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान डगमगाए ना, उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319,13,00,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में पहुँच जाएगी।
0: उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण इस योजना का लाभ किसानों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल में क्लॉक टावर के नजदीक सफाई अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वयं भी श्रमदान किया और लोगों से भी सफाई अभियान में सार्थक सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिका भी लोगों को वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री पर देश के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है, दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। अमेरिका की बाल्टिक कंसल्ट सर्वे कंपनी ने श्री मोदी को दुनिया में सबसे मजबूत और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी के हाथों में देश का खजाना सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, इसीलिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
1: 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हेल्थ में भी, कृषि में भी और शिक्षा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहाँ हाईवे बने हुए हैं, एयरपोर्ट दुगने से ज्यादा हुए हैं, मेडिकल कॉलेज दुगने से ज्यादा हुए हैं, MBBS की सीट दुगने से ज्यादा हुई है, एक्सपोर्ट जो रक्षा का उत्पादन है वो भी 35 गुना बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी

0: अभियान चलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण डागर व हरजीत डागर भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और जन कल्याण को समर्पित हैं।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के है। कहते नीयत साफ हो और नीतियां सही हो तो परिणाम जमीन पर देखने को मिलते हैं। मोदी जी की सरकार में मोदी जी खुद की नीयत भी साफ है, उनकी नीतियां भी स्पष्ट हैं, इसलिए 12 सालों में देश के लोगों ने विकास के परिणाम देखे। मोदी जी पहले दिन से राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर आगे बढ़े।
0: उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री की सोच का परिचायक है। श्री गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों में जहां कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए हैं, वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कॉलेज खोले गए हैं। इन 12 वर्षों में रेल व सड़क संरचना का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरा दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। हरियाणा सरकार ने नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए कल परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निःशुल्क बस सुविधा दी है। नीट प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हरियाणा में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद सहित विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन व आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रायोगिक अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त संजय जून तथा उपायुक्त आयुष सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों सहित लगभग 1400 लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। कार्यक्रम के दौरान हरित योग की थीम अनुसार वृक्षारोपण भी किया गया। अधिकारियों व प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक लोगों को योग से जुड़ने का आह्वान किया। कैथल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश राविश ने आज अतिरिक्त अनाज मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रायोगिक अभ्यास में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। श्री राविश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदर और कलायत में विधायक सतपाल जांबा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयुष विभाग और पतंजलि के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस शिविर से राज्य सरकार की फिट हरियाणा पहल को नई दिशा मिल रही है। शिविर के माध्यम से योगयुक्त नशामुक्त हरियाणा एवं औषधीय पौधारोपण द्वारा हरित योग का प्रभावी संदेश दिया गया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार स्थित नई सब्जी मंडी में अटल किसान श्रमिक कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में किसानों, श्रमिकों व मंडी में कार्यरत मजदूरों को 10 रूपये में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा,
2: लक्षित नई योजनाएं श्रमिकों के लिए है, चाहे वो बीमा की बात हो, 60 साल का कोई भी श्रमिक हो जाता है उसको केंद्र सरकार की तरफ से भी 3,000 रूपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है और हरियाणा में 3200 रूपए बुढ़ापा पेंशन दी जाती है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और भी बहुत सी योजनाएं हमारे श्रमिक के लिए है, चाहे वो बेटी की शादी के अंदर कन्यादान हो, चाहे मकान बनाने की बात हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश भर के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने देने का काम किया है।
0: खंड कार्यक्रम प्रबंधक अनु मलिक ने बताया कि हिसार में ऐसी

0: 6 कैंटीन हैं।
1: कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनकी महिलाएं करेंगी। इस कैंटीन में जो खाना मिलेगा 10 रुपए में थाली दी जाएगी और 20 रुपए में थाली रहेगी, 10 रुपए गवर्नमेंट देगा। टोटल हिसार में 6 कैंटीन चल रही है।
0: डिजिटल भारत निधि कोष के तहत दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत BSNL को देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यार कोई है?
3: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ, डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र से सुनिए आज का गीता संदेश।
4: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 31 से आगे के श्लोकों की व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। इस श्लोक में शब्दों का अर्थ है, यह जो एकत्वम एकी भाव में आस्थितः स्थित होकर सर्वभूत स्थितम समस्त प्राणियों में स्थित माम मुझको भजति भजता है, सह वह योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तमानः स्थित होता हुआ भी मयि मुझ में रहता है। अर्थात जो योगी एकी भाव में स्थित होकर समस्त प्राणियों में आत्म रूप से स्थित मुझको भजता है, वह सब प्रकार वर्तता हुआ मुझ में ही स्थित होता है। भक्त योगी अनुभव करता है कि उसके प्रीत्यास्पद ही सभी प्राणियों में स्थित हैं, इसलिए भक्त योगी सर्वत्र एकत्व को देखता है। जैसे संसार में हम देखते हैं कि जब कोई अपरिचित व्यक्ति पास आता है तो एक दूरी बनी रहती है, किंतु जब पता चलता है कि वो हमारा रिश्तेदार है तो तुरंत प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार भक्त भी जब दूसरे प्राणी से व्यवहार करता है तो उसे लगता है कि वह अपने प्रिय परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों से व्यवहार कर रहा है। इसी अर्थ में यह कहा गया है कि सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। उस भक्ति योगी की सारी क्रियाएं अपने प्रियतम परमात्मा को उद्देश्य करके होती हैं। प्रस्तुत श्लोक में प्रश्न उठता है कि सब प्रकार से वर्तता हुआ सर्वथा वर्तमानोपि का अर्थ यह हो सकता है कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी भगवान में वर्तता है। इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा पाप कर्म हो ही नहीं सकता, अतः ऐसे प्रश्न का अवसर ही नहीं है। श्रोताओं, 30वें और 31वें श्लोकों में भक्ति योगी की सिद्धावस्था का वर्णन होता है। इससे पूर्व ध्यान योगी की साधना और उसकी सिद्धावस्था का वर्णन भगवान करते हैं। इसके बाद के इस श्लोक में परम योगी की व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मौ पम्मेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। इस श्लोक में अर्थ इस प्रकार है, आत्मौ पम्मेन अपने समान ही सर्वत्र समं सभी जगह समता देखता है वह योगी परमः परम श्रेष्ठ मतः माना जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने समान ही सर्वत्र बराबर देखता है चाहे सुख हो अथवा दुख, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य का अपने सभी शरीर के अंगों के प्रति समान व्यवहार होता है, जैसे जीव को पेट की पीड़ा दुख का कारण बनती है, उसी तरह पैर की पीड़ा भी दुख का कारण बनती है, अर्थात वहां समत्व बुद्धि होती है। परम योगी भी इसी तरह सबके प्रति समान व्यवहार करता है, वह दूसरों के सुख दुख में सुखी और दुखी होने का अनुभव करता है। परम योगी के समत्व बुद्धि का यही अभिप्राय है। इसके बाद के श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः

साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ने वायोरिव सुदुष्करम्। इन दो श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। इन श्लोकों में आए हुए शब्दों का अर्थ है मधुसूदन, हे मधुसूदन त्वया आपके द्वारा अयम यह जो योगः योग साम्येन समत्व के रूप में प्रोक्तः कहा गया है मनसः मन के चंचलत्वात् चंचल होने से अहम मैं स्थिराम स्थित रहने वाली स्थितिम स्थिति को ना नहीं पश्यामि देखता हूँ। हे मधुसूदन आपके द्वारा समत्व के रूप में जो योग बोला गया है मन के चंचल होने के कारण मैं उसकी टिकने वाली स्थिति नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे वासुदेव मन अत्यंत चंचल है, मन मत देने वाला है, हठीला है और बलवान है। उसका निग्रह मैं वायु के निग्रह के समान अत्यंत कठिन मानता हूँ। इसके पूर्व दो श्लोकों में भगवान वासुदेव योगी के समत्व बुद्धि का वर्णन कर रहे थे, परंतु अर्जुन प्रसन्न न होकर यह चिंतन करने लगा कि मन के चंचल होने पर ऐसी स्थिति कैसे मिल सकती है। जिस समत्व योग की बात भगवान वासुदेव कर रहे हैं वह तो मन से ही संबंधित है, तो फिर ऐसा योग मन से कैसे संभव है। यदि कथनचित ध्यान योग की साधना से अष्टांग योग की बहिरंग साधना के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की सहायता से मन धारणा में थोड़ा सक्षम हुआ भी तो वह थोड़े ही क्षणों के लिए होगा, वह कोई दीर्घकालिक नहीं होगा। मन के चार विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। अर्जुन मन के लिए चार विशेषणों का वर्णन करता है। पहला है चंचल, दूसरा है मंथनशील, तीसरा है बलवान और चौथा है हठी। मन की चंचलता को सभी जानते हैं, अर्थात मन की स्थिति वही है जैसे किसी बंदर ने शराब पी रखी है फिर उसे बिच्छू ने डंक मार दिया है। एक तो बंदर जो कि स्वभाव से ही चंचल होता है, फिर शराब पिया हुआ ऊपर से बिच्छू ने डंक मार दिया हुआ, अर्थात बंदर की यह अवस्था परम चंचलता की होती है। वही अवस्था मन की है, बात यहीं खत्म नहीं होती है। वह चंचल होने के साथ साथ प्रमाथी है। प्रमाथी का भाव है प्रमथन स्वभाव वाला। प्रमथन का अभिप्राय है मथ देने वाला, अर्थात विषयों की प्रति उसकी आसक्ति को रोकना संभव नहीं होता है। वह इंद्रियों को उसी प्रकार मथ देता है जैसे मथनी दही को मथ देती है। अब यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि ऐसे चंचल मन के साथ क्या किया जाए, क्या उसे रोकने का प्रयास करें। तब अर्जुन कहता है कि वह तो अत्यंत बलवान है। दूसरा विशेषण दिया बलवत्। ऐसे बलवान मन को कैसे रोका जा सकता है। यदि कहा जाए कि ऐसे मन को समझाकर ठीक रास्ते में लाने का प्रयास करना चाहिए तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह मन अत्यंत हठी है। हठी तीसरा विशेषण दिया। हठी का अर्थ होता है दृढ़ है, अर्थात वह अड़ियल है। अड़ियल होने के कारण किसी की बात नहीं मानता है, वह जिस ओर आकृष्ट होता है उसमें प्रवृत्त हो ही जाता है। इस कारण ही अर्जुन मन को नियंत्रण में रखना वायु के समान दुःसाध्य मानता है, अर्थात कठिन मानता है। उसने तो पूर्व में भी इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि किसके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है, मानो वह बलपूर्वक उसमें लगा दिया गया हो। फिर यहाँ पर अर्जुन का यह भी संकेत हो सकता है कि भगवान आप ही तो मन को चंचल और अस्थिर बतलाते हैं। ऐसी दशा में यह साम्य योग व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है। श्रोताओं आपको याद होगा भगवान इसी छठे अध्याय के 26वें श्लोक में मन की चंचलता, उसके स्थिर न होने की विलक्षणता को बताए थे। उसी को लेकर के अर्जुन यह प्रश्न करता है। अर्जुन के ही समान हमें भी यही लगता है कि मन को बस में लाना असंभव सा ही है। अर्जुन की बात को भगवान कृष्ण काटते नहीं हैं, अपितु एक प्रकार से उसका समर्थन करते हैं, किंतु साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि ऐसे दुर्दांत मन को भी अपने अधिकार में लाने का उपाय है। श्रोताओं गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के

0: श्लोक संख्या 31 से 34 तक की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र की थी। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम खेती बाड़ी वो तमाम सभी बातें करते हैं जिससे हम कृषि को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। और आज कार्यक्रम में हम बहुत कुछ लेकर आए हैं और चर्चा हमारा रहेगा इसमें भाई, एक तो मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड की हम चर्चा की जानकारी देंगे, साथ के साथ नई फसल नई उमंग में हम बातचीत जो आज हमारा विषय रहेगा पपीता के बाग उगाने में सावधानियां, और भाई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और मनोरंजन तो हमेशा हम जरूर करवाते हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का हमारा जो कृषि प्रश्न है, राज्य में रजनीगंधा फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से, राज्य में रजनीगंधा फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? भाई इसका जो सही जवाब आप हमारे को 6:50 से पहले आप ज़रूर दीजिए। और भाई इसका जो सही जवाब को आपको जो हमारे को देना भाई 9464-21336 पर, यानी 9466021336 पर SMS या WhatsApp के माध्यम से आप हमारे को 6:50 से पहले ज़रूर दीजिए। और भाई जो सही जवाब देगा उसको भाई बधाई भी देंगे और उसके नाम को भी हम ज़रूर बोलेंगे, यहाँ पर बताएंगे आपको भाई सही जवाब किसका किसका रहा। तो भाई बिना किसी देरी के भाई जल्दी से इस प्रश्न का आप उत्तर ज़रूर दीजिए। और आज साथियों हमने महत्वपूर्ण बातचीत भी करी थी कि गर्मियों में मधुमक्खियों की प्रबंध व्यवस्था, क्योंकि भाई गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और जो प्रगतिशील किसान बहन भाई इसमें मधुमक्खियों का व्यापार करे तो उनके लिए क्या सलाह हो सकती है, और इस विषय पर भाई डॉक्टर CJ जुनेजा जो भाई वरिष्ठ वैज्ञानिक है, सलाहकार है मधुमक्खी पालन एकीकृत रामनगर कुरुक्षेत्र से, और उनसे बातचीत करी थी। और बातचीत के महत्वपूर्ण अंश को सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में।
2: बहनों और भाइयों, आज हमारे साथ डॉक्टर CJ जुनेजा सलाहकार मधुमक्खी पालन एकीकृत केंद्र रामनगर से जुड़े हैं, और डॉक्टर साहब से आज बात करते गर्मियों में मधुमक्खी पालन का प्रबंधन व्यवस्था विषय पर बातचीत। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है,
7: धन्यवाद सर।
2: डॉक्टर साहब जिस प्रकार

0: से गर्मियां बढ़ रही है लगातार, अभी आगे भी मौसम ऐसा ही रहेगा, तो जो हमारे साथी मधुमक्खी पालन का प्रबंधन कर रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार से व्यवस्था करें, क्या विशेष ध्यान रखा जाए इन दिनों में,
1: इसके
0: जैसे
1: लिए
0: लू
1: सबसे,
0: से
1: हाँ
0: गर्मी से कैसे बचाया जाए?
1: इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में जो सबसे पहले प्रिकॉशंस जो उन्होंने लेनी है कि उनके जो कॉलोनियां हैं मधुमक्खी के बक्से जो हैं उनको छाया में स्थानांतरण कर लें। वैसे तो किसान भाइयों ने रख दिए होंगे, लेकिन जिन किसान भाइयों ने नहीं रखे अभी तक, वो गर्मी के ये मौसम से बचने के लिए पेड़ों के नीचे ही बक्से रखें। और उससे क्या होगा कि छाया रहने से काफी हद तक मक्खियों की जो समस्या है वो हल हो जाती है। और दूसरा, पानी का प्रबंध, ये ध्यान रखें कि जहां पर भी बक्से रखे हैं आधे किलोमीटर के अंदर पानी का प्रबंध होना चाहिए, चाहे वो पानी ट्यूल का हो, नहर का हो, वर्षा का हो। अगर कोई पानी का प्रबंध नहीं है तो उनको आर्टिफिशियली मतलब अलग से खड्डा खोद के उसमें पॉलिथिन डाल के पानी उसमें डाल के रखना पड़ेगा। ऊपर चाहे ऊपर लकड़ियां से रख के आप बोरी डाल सकते हैं उसके ऊपर, ताकि गीली रहे बोरी और मक्खियां वहां से अपना पानी का जितनी उनकी आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। जब तक पानी नहीं है मक्खियों का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है आजकल, खास तौर पे गर्मी के दिनों में। आप
0: जी
1: इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि एक मधुमक्खी का बक्सा लगभग 1 लीटर पानी उपयोग में ले लेता है, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ती है बक्से का तापमान बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए, क्योंकि ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे हम हैं वैसे ही ये है, बक्से का टेम्परेचर 34-35 डिग्री रहेगा या इससे भी कम रहता है, लेकिन अगर जैसे इससे के ऊपर बढ़ेगा तो मक्खियां जो है हवा पानी लेके आती हैं, पंखों से हवा करती हैं और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यानी तापमान बक्से का बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, जो मक्खियों का भोजन है उनको खाना दिया जाता है, चाहे वो वर्कर्स का है, चाहे वो रानी मक्खी को दिया जाता है या बच्चों को दिया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें पानी
0: जी
1: की आवश्यकता होती है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि बिना पानी के मक्खियों का जिंदा रहना संभव नहीं है। तो दूसरा, अगर पेड़ों की छाया है तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल आपको बक्से वहीं पर रखने हैं। तीसरा, आप ये ध्यान रखें, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के साथ आती है कि ये नहर सड़क के किनारे जो सफेदे के पेड़ हैं उसके नीचे बक्से रख देते हैं।
0: जी
1: क्या होता है कि एक तो वहां पर सूखी पत्तियां होती हैं, कई बार लकड़ियां छोटी गिर जाती हैं, बाई चांस किसी कारणवश, और ये कई बार हादसे होते हैं, हर साल हो जाते हैं कि किसी भाई ने बीड़ी या सिगरेट पी और उसकी वही तीली फेंक दी तो आग लग जाती है और आपके बक्से झुलस के मक्खियां मर जाती हैं। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपने स्वेदों के पेड़ों के नीचे बक्से रखे हुए हैं नहर के किनारे या सड़क के किनारे, तो ये ध्यान रखें कि उसके नीचे सूखी पत्तियां लकड़ियां बिल्कुल ना हो, ताकि आपके बक्सों में किसी जाने अनजाने किसी कारणवश कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये भी ध्यान रखें कि बक्से जो हैं वो ऊंचाई पे रखें। कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, खास तौर पे बारिश के दिनों में, जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, किसानों के बक्से तो सफेदे के पेड़ के नीचे पड़े हैं, लेकिन वहां पर जो है कई बार बिल्कुल नीची जगह होती है और
0: जी
1: एकदम बारिश आई और आपके बक्से डूब गए पानी के अंदर, तैरते हुए मिलते हैं सुबह जाते हैं तो। और हर साल ये समस्या होती है, तो कोशिश करें कि आपके बक्से ऐसी जगह पे रखें, अगर सफेदों के पेड़ के नीचे भी रखे हुए हैं तो ऊंची जगह हो उसके ऊपर रखें आप बक्से, ताकि कोई फ्लड से या बारिश के कारण पानी ना भरने पाए। आग से भी समस्या का समाधान करना आपने और पानी की बाढ़
0: जी
1: से भी इसका समाधान करना है। ये तो होगी बात आपको कि आप बक्सों की सफाई रखें चारों तरफ और उसको बाढ़ से भी बचाएं, आग से भी बचाएं।
0: और
1: लेकिन जो, हाँ जी
0: डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियों में अकाल जैसे भोजन की कमी रहती है, तो
1: जी,
0: इस प्रकार इन दिनों में किस प्रकार से प्रबंध करें, कैसे
1: इसका जो
0: करें?
1: है, हम किसानों को हमेशा यही कहते हैं कि जब मार्च के आखिर में शहद निकलता है या अप्रैल के पहले हफ्ते में, या हमारे जो इधर जो हरियाणा के किसान हैं, बहुत से किसान जो है सूरजमुखी पे बक्से ले आते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले सूरजमुखी का शहद निकला है कि हर बक्से में 2-3-4 किलो शहद रहने दीजिए, लेकिन ये देखा गया है कि आम साधारण किसान जो है शहद नहीं छोड़ता, तो वो कहते हैं जी चीनी की चाशनी पिला लेंगे। तो ऐसे हालात के अंदर आप ये देखते हैं कि बिल्कुल इसमें खाना नहीं, क्योंकि आजकल जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं बिल्कुल फूलों की कमी होती जा रही हो गई है, बिल्कुल एकदम इस समय कोई फूल नहीं है आज की तारीख में।
0: बिल्कुल
1: तो अब जो है ये समस्या है कि हमने मक्खियों को जिंदा भी रखना है और उसके खाने के लिए आपने मक्खियों को चीनी की चाशनी देनी है। चीनी का चाशनी का मतलब कि चीनी को पानी के अंदर घोल के और मक्खियों को देना है। लेकिन ये भी एक बहुत ध्यान रखे हमारे किसान भाई कि वो क्या करते हैं कि 1:1 मतलब एक भाग चीनी और एक भाग पानी। अगर मान लिया आपके पास 100 बक्सा है तो 50 किलो चीनी 50 लीटर पानी उसके अंदर घोल देते हैं और किसी भी बर्तन में रखने से पहले ये कोशिश करें कि उसको एक बार उबाल लें, एक या दो उबाल आने चाहिए उसको। कारण क्या होता है कि अगर कच्चा चीनी का घोल जो है पानी के अंदर घोल के आप मक्खियों को देंगे तो मक्खियों को दस्त की बीमारी हो सकती है। तो आप उसको थोड़ा सा उसको एक उबाल दे दीजिए, यानी जिससे एक तार की चाशनी बन जाए, बस ज्यादा नहीं। और उसको है दिन में आप उसको गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसको पानी को ठंडा होने दीजिए और रात्रि के समय, यानी दिन में आप अगर तो आपके पास फीडर है, आजकल वैसे तो प्लास्टिक के फीडर होते हैं जिसके अंदर आप चीनी का घोल डाल देते हैं, अगर फीडर नहीं है तो फिर आपको पॉलिथीन के लिफाफे लाने पड़ेंगे। और आप ये मान के चलिए कि अगर एक लीटर चीनी की चाशनी आपने मक्खियों को देनी है तो कम से कम वो 4 लीटर का 4 किलोग्राम का लिफाफा होना चाहिए, 4 किलो यानी 4 गुना बड़ा। और उसके अंदर 1 लीटर ठंडा, बिल्कुल जब ठंडी हो जाए चीनी की चाशनी तो मग्गे से 1 लीटर उसमें डाल दीजिए और उसका मुंह जो है गांठ लगा दीजिए या रबड़ से उसको रबड़ बैंड से हवा निकाल के उसको बंद कर दीजिए। तो ये काम आप दिन में कर सकते हैं, सुबह आप घोल बना सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं, उसको ठंडा होने दीजिए और उसके बाद उसके जो है लिफाफों के अंदर, जैसे 100 पॉलिथीन के लिफाफों में आपने चीनी का घोल भी डाल दिया और एक टब के अंदर लिफाफे रख दिए। लेकिन चीनी की चाशनी आपने कब पिलानी है मक्खियों को, जिस समय संध्या हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, अंधेरा होने वाला, यानी मक्खियां बाहर अंदर आना जाना बंद हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मक्खियों शहद की चोरी हो जाती है, चीनी की चोरी होने लगती है कि जिस बक्से के अंदर आप पहले चीनी की चाशनी देते हैं दूसरे बक्से की मक्खियां जहां पर जिनको चीनी की चाशनी अभी नहीं मिली तो मक्खियां इसके बक्से के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। तो उस समय जब अंधेरा हो जाता है तो मक्खियां बाहर आना बंद हो जाती है, अंदर आना बाहर जाना बंद हो जाती है। उस समय आप बक्से के ऊपर से बोरी उठाइए और वहां पर एक लिफाफा चीनी का रख दीजिए, चीनी के घोल का। इसी तरह से अगर आपके पास 50 बक्से हैं तो 50 बक्सों में ही एक ही रात में, यानी आपने अगर 8 बजे काम शुरू किया 10 बजे तक आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर 100 बक्से हैं तो 11 बजे तक हो जाएगा, 10 बजे तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जितने बक्से हैं आपने सभी बक्सों के अंदर चीनी की चाशनी पिलानी है। ये ना हो कि आप कह दिए आप रात को 10 बज गए अब तो हम थक गए कल सुबह हम चीनी की चाशनी पिला देंगे, तो सुबह आप देखेंगे अभी सुबह 6 बजे होंगे तो चोरी करना शुरू कर देंगी मक्खियां। जिस बक्से के अंदर चीनी की चाशनी नहीं है वो उस बक्से में अटैक करेंगी जहां चीनी की चाशनी आपने दी थी उनको।
0: जी डॉक्टर साहब, तो ये डॉक्टर साहब हाँ जी, हम गर्मियों में बात करें तो गर्मियों में कीट और बीमारियों से भी बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: वो आपने देखिए चींटियां जो है ये समस्या रहती है, तो आप क्या करें, चीनी मिट्टी के प्याले से होते हैं, प्लास्टिक के भी आप ले सकते हैं, तो बक्सों को कभी भी जमीन पे नहीं रखना। अगर जमीन पे रख देंगे तो आपके नीचे से उसमें दीमक लग जाएगी और आपका तलपट्टा खराब हो जाएगा जो सबसे महंगा भाग होता है मधुमक्खी के बक्से का। इसलिए स्टैंड, लोहे के स्टैंड जो 10 इंच कम से कम ऊपर हो उसके ऊपर बक्से रखने हैं। और अगर चींटियों की समस्या है, दूसरी समस्या है, तो उसके चीनी मिट्टी के प्याले या कोई बर्तन दूसरे लेके, प्लास्टिक के आजकल मिल जाते हैं, तो हर स्टैंड के पाओ के नीचे उसमें रख के उसके अंदर पानी भर देना चाहिए। इससे क्या होता है चींटियां ऊपर नहीं जाती। तो ये समस्या, और अगर पानी की भी समस्या है वहां पर दिक्कत भी है तो मक्खियां उसको उसके अंदर थोड़ा सा आप कुछ डाल दीजिए, मक्खियां उसको भी यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से आप चींटियों से मक्खियों का बचाव कर सकते हैं। और जो बीमारियों की बात आप कर रहे हैं, उस समय मक्खियों की संख्या कम हो जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं है कि उस समय आप बस मक्खियों को ये सीजन आपने निकालना है। और कोई ऐसी बीमारी खास ऐसी नहीं है कि जो इस समय मक्खियों में एकदम स्प्रेड करती है, जब फूल आता है फिर उसके साथ बीमारियां भी और भी आ जाती हैं, लेकिन इसमें उसके ऊपर इतना आप ध्यान ना दें। लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि आसपास कई लोग जो है सब्जियां उगाते हैं वहां पर स्प्रे कर देते हैं, कोई भिंडी करेला या कुकुरबिटेसी फैमिली जिसको कद्दू करेला खीरा वगैरह, तो लोग जो है कई बार स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। अब जीरी का सीजन शुरू हो गया है तो कई बार लोग स्प्रे करते हैं और मक्खियां जो है फिर उससे मरती हैं। तो ये कोशिश करें कि जब भी कहीं आसपास स्प्रे हो, जहां पर ही आपके बक्से रखे हुए हैं, उसके एक किलोमीटर

0: तक लोगों से आप मिलते रहें, रैपिड बना के रखिए कि किस समय वो दवाई का छिड़काव तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप मक्खियों के बक्सों को जाली से बंद कर दीजिए उस समय। लेकिन जब
1: अंत में जानना चाहेंगे कुछ अन्य सलाहें जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे अंत में?
0: हम तो ये सुझाव देते हैं कि जो भी उसका काम कर रहा है वो ट्रेनिंग जरूर ले। हर जगह ट्रेनिंग होती है। रामनगर में जो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास के अंदर, वहां पर भी इसका प्रशिक्षण होता है। आपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, क्योंकि साथ समय के साथ साथ कई समस्याएं किसानों के साथ आती हैं। और टेक्निकल लोग जो भी आपके आसपास, आपके जिले के आसपास जो ट्रेंड आदमी हैं, उनके संपर्क में रहें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनसे डिस्कस कीजिए। आप दफ्तर में आइए, लोगों के संपर्क में रहने से क्या होता है। और दूसरा, ट्रेनिंग बीच में जरूर अटेंड करते रहिए, ताकि आपका नॉलेज जो है वो अपग्रेड होता रहे। कोई नई स्कीम आती है, किसी के बारे में जानकारी है तो वो भी आपको जानकारी मिल सके। और आप ये ट्रेनिंग
1: जो ये ट्रेनिंग है विभाग द्वारा मुफ्त होती है,
0: ये जो हर महीने होती है ट्रेनिंग, ऑनलाइन इसका नॉमिनेशन मांगते हम लोग, और उस ऑनलाइन ही आप उसका अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। और इसमें खाना फ्री है, रहना फ्री है, और किसी प्रकार की कोई ट्यूशन फीस नहीं है। जो किसान हरियाणा के रहने वाले हैं, बाकी बाहर वालों से हम 5,000 रुपए ट्रेनिंग के प्रशिक्षण की फीस लेते हैं, 1,000 रुपए एक प्रतिदिन के हिसाब से, लेकिन हरियाणा के किसानों के लिए सब ये फ्री है। तो कहने का मतलब कि आपका नॉलेज अपडेट रखना बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। अब जो है सीधा आप शहर कैसे बनाना है, यही समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, कहां पर आप बक्से आप ले जा सकते हैं, अगर माइग्रेशन कर सकते हैं बक्सों का स्थानांतरण वो कीजिए अगर पॉसिबल हो। नहीं पॉसिबल तो 4 फार्मर मिलके गाड़ी हायर करके वो उस जगह ले जाए जहां पर फूल हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब सितंबर जैसे आएगा आपका फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इससे एरिया में नॉर्दर्न साइड में नहीं मिलेंगे आपको फूल। ये अरहर है, तिल का फूल है, ये आपको साउथ के डिस्ट्रिक्ट से मेनली वहां पर मिलेंगे। तो किसानों को यह भी ध्यान रखना है, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर माइग्रेशन भी करना पड़े, मक्खियों के बक्सों का स्थानांतरण भी करना पड़े, चाहे वो महंगा है लेकिन उसके बिना आपका गुजारा भी नहीं है। तो आप 2-3 किसान 4 किसान मिलकर जो है गाड़ी कर सकते हैं, खर्चा भी बचता है और उनके मक्खियों के समाधान भी हो जाता है।
1: आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: बैनर भाइयों, ये हमने बातचीत करी थी डॉक्टर सीजे जुनेजा, जो सलाहकार है मधुमक्खी पालन एकीकृत रामनगर कुरुक्षेत्र से। और भाई डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर दी, ताकि भाई जो मधुमक्खी पालक हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वे इसमें लाभ जरूर प्राप्त करें। और बहनों और भाइयों, इस जानकारी जो हम बातचीत कराते हैं या अन्य महत्वपूर्ण होते हैं, आप सभी से निवेदन है कि भाई ये जो जानकारी आप जरूर आपस में साझा जरूर करें जो आपके साथ खेती बाड़ी करते हैं आस पड़ोस में भी। और अब चर्चा हम जरूर कर लेते साथियों मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। और जब इसकी हम जब बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो बहनों और भाइयों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो ये योजना है भारत सरकार द्वारा भाई 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। और भाई ये प्रमुख कृषि पहल है। इसका उद्देश्य भाई किसानों को उनकी जो मिट्टी के स्वास्थ्य की जो सटीक जानकारी प्रदान करना है और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को भाई बढ़ावा देकर हम पैदावार को इसमें बढ़ाना है। और जब योजना की बात करते तो एक तो साथी इसमें हमारी जो थीम है भाई स्वस्थ धरा खेत हरा। और कार्ड की वैधता की बात करते तो भाई इसमें 3 साल में एक बार नया कार्ड जारी किया जाता है। और इसमें भाई मिट्टी के 12 महत्वपूर्ण मापदंडों, जिस तरह भाई नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, पीएच मान है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जिंक, आयरन, इस प्रकार की भाई जाँच की जाती है। और भाई जांच रिपोर्ट के आधार पर भाई कार्ड में यो दर्ज होता है कि भाई मिट्टी को किन पोषक तत्वों की जरूरत है और किस फसल के लिए भाई कितनी खाद यानी कि उर्वरक का इस्तेमाल हमने करना चाहिए। और भाई ये कार्ड तो भाई सरकार द्वारा तय मानक के अनुसार नमूना संग्रह और प्रशिक्षण का खर्च लगभग भाई इसमें 300 प्रति कार्ड आता है। और भाई इस तरह महत्वपूर्ण जानकारियाँ जरूर हमने मिलती हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भी आप इसमें करवा सकते हो नमूना संग्रह है। और भाई कार्ड प्राप्ति भाई लैब रिपोर्ट के आने के बाद आप भाई जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य

0: कार्ड पोर्टल पर अपना आधार नंबर या आवेदन आईडी डालकर कार्ड डाउनलोड इसमें कर सकते हैं। और भाई इस तरह देखो, एक तो मिट्टी की जांच भी होती है, हमें पता भी चलता है पानी की भी, जो अन्य महत्वपूर्ण जो सलाह है साथ ही वो सरकार के माध्यम से हमने ज़रूर इसमें मिलती है। और ये जो कार्ड साथियों हमने बहुत ही ज़्यादा लाभ ज़रूर देता है, क्योंकि पीआईबी ऐप द्वारा जो भाई प्रदत्त जानकारी की हम बात करें तो भाई रोको के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली जो कमी दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में भाई शुरू की गई थी। और भाई देखिए इसकी जो लाभ की जब हम बात करते हैं, भाई लाभ तो जरूर रहता है। और योजना को दूसरे चरणों में बीते 2 वर्षों में कृषि मंत्रालय ने किसानों को भाई 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए थे। और भाई योजना की जब हम बात करते हैं तो भाई योजना से तो वो फायदा रहता है, स्वस्थ धरा खेत हरा से इसमें हम सभी को लाभ जरूर मिलता है। और गाँव विकास भाई जो ये बात करें तो भाई स्वस्थ धरा तो हमारी रहती है, खेत भी बढ़िया रहते हैं। और मिट्टी की जांच है भाई, मिट्टी का यही है कि भाई इसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो भाई खेती भी ज़रूर बेहतर होगी। और कई बार हम देखते हैं भाई जब स्वास्थ्य बेकार हो जाता तो मिट्टी का, कई बार भाई जो हमारी जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई कई फसलें हम उस मिट्टी से ले नहीं पाते, तो भाई समय पर आप अपने मिट्टी की जांच कराइए। और भाई जो कार्ड की जब हमने मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं, भाई जो भी कमियां हैं आप उसको सुधार करके समाज को हमेशा आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जानकारी आपको ज़रूर दी और जानकारी दे देते भाई कल के कृषि कार्यक्रमों की भी। कल भाई रविवार है और रविवार को हम कार्यक्रम लेते हैं थारे संदेश मारेगी, तो और सोमवार को कार्यक्रम अन्नदाता में हम जो बातचीत लेकर आए उसमें विषय हमारे आज की नसीहत में कृषि में किसानों के लिए कृषि उपकरणों का महत्व व रखरखाव और जानकारी रहेगी। प्लास्टिक मूल्य का बागवानी में उपयोग के महत्व के बारे में जरूर जानकारी देंगे। और इसी तरह साथियों जो अन्य जो जानकारी हम जरूर लाते भाई, नई फसल नई मंग में हम बात करें भाई पपीते का बाग उगाने में सावधानी की, जब इसकी बात करते तो साथियों पपीता बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल और होने के कारण इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो भूमि एवं जलवायु की जब बात करते हैं और तो भाई इसमें आप जरूर ध्यान रखें लिए जड़ पाड़ा पड़ता हो वहाँ पर यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। एक तरफ इसकी जो भरपूर वृद्धि के लिए भाई अधिक पानी की आवश्यकता होती है और वही यह ज़्यादा देर तक जल भराव की स्थिति को भी सहन नहीं करता है। इसकी खेती खारी और कलर भूमि को छोड़कर भाई जल निकाय वाली हर भूमि के लिए इसमें कर सकते हैं। किस्मों की बात करते तो भाई एक तो वाशिंगटन है, कुरहनी है, पूसा डिलीशियस है और पूसा डवार्क है। और भाई इन किस्मों को उगाकर हम ज़्यादा लाभ इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और पौधरोपण के समय की बात करें तो भाई इसमें जून के अंत में 2 मीटर की दूरी पर 50x50x50 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद दें और गड्ढों में मिट्टी व गोबर की खाद की मात्रा बराबर के रूप में इसमें मिलाकर भर दें और भरने के बाद सिंचाई करें ताकि गड्ढों में मिट्टी बैठ जाए। और बुआई माह में एक गड्ढे में किसी भरोसेमंद नर्सरी से या स्वच्छ जो तैयार किए गए पौधे के 2 की संख्या में लगाए, उगने के पश्चात अच्छी बढ़वार वाला पौधा रखकर दूसरा इसमें निकाल देवे और भाई लाभ जरूर होता है। तो देख रेख आप जरूर करते तो निश्चित तौर पर इसमें लाभ हमें जरूर मिलता है। तो साथियों जानकारी आपको जरूर दी और अब एक रागनी सुन लेते और रागनी के बाद हम बात करेंगे अन्य विषयों को लेके कार्यक्रम किसानवाणी में, लेकिन पहले ये संदेश।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक

0: मैनल भाइयों, ये तो आपने रागिनी सुनी, और रागिनी से पहले हम जो चर्चा जरूर करे थे कार्यक्रम में, और जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने जरूर दी, और इसी तरह साथियों जानकारी आप पीआईबी ऐप के माध्यम से भी जरूर ले सकते हैं, जो घर बैठे सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि साथियों किसान कॉल सेंटर नंबर जो 1551 है, आप घर बैठे महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और भाई जो प्राकृतिक खेती की भी बात करें तो भाई प्राकृतिक खेती हमने ज़रूर करनी चाहिए, और देखिए शुरुआत में थोड़ा सा लाभ कम मिल सकता है, लेकिन भाई आगे आने वाले समय में आपकी भूमि भी बढ़िया रहेगी और उस तरह लाभ भी ज़रूर मिलेगा। और भाई प्राकृतिक खेती को ज़रूर अपनाएं। और भाई कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे ज़रूर प्रश्न का जिक्र करा था कि भाई राज्य में रजनीगंधा फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है, और इसके सही जवाब की बात करें तो साथियों हमारे को जो सही जवाब आए हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सही जवाब आया साथियों, इसमें ये जो भाई कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान और कृष्ण बुद्धिमान और परिवार के सभी सदस्यों ने भाई ये का सही जिक्र करा, भाई इन्होंने सही बताया। और इसके बाद भाई प्रोफेसर जयसिंह खनगवाल भाई ये रोहतक से हमारे पास सही जवाब आया, इसी तरह सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र से भी हमारे पास सही जवाब आया, ये जिनके नाम है धर्मपाल मूर्ति देवी और मनोज रेखा निधि निशा। और एक और जवाब जरूर लेते हैं, ये भाई पारस बबीता और बीना का ये सही जवाब इन्होंने सही जवाब दिया है। और भाई धीमान फैमिली की तरफ से ये सही जवाब आया, और भाई यमुनानगर से भी हमारे पास सही जवाब आया, रणधीर सिंह बांगड़ मेजो देवी और परिवार के सभी सदस्य को। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और एक उम्मीद करते भाई आगे भी आप ऐसे ही भाग जरूर लेते रहेंगे, और जानकारियां साथियों हम जरूर आपके साथ करते हैं। और अब ये संधि सुनते हैं।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहां,
2: परम तो सब ही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

मैंने और भाइयों आज के कार्यक्रम में इतना ही, और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्रीय केंद्र है। अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी, और अब कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम संसार। समय ठीक 7 बजे का समय हो गया है।

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, योग की तो भरपूर चर्चाएं जरूर हो रही है और भाई 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम जरूर मनाते हैं। और हम अगर जो पीछे की बात करें तो भाई काफ़ी दिनों से भाई योग के प्रति ज़रूर उत्साह हैं और आज हम जानकारी भी आपको ज़रूर देंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो पूर्व संध्या है उस पर। और इसी तरह भाई एक चर्चा भी ज़रूर लेकर आज हम आए विश्व शरणार्थी दिवस और इसकी भी बात जरूर करके और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जरूर देते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार में। और जैसे कि नाम भाई ग्राम संसार है तो गांव गो आंट के हमारे लोग संस्कृति की हमारे जो हरियाणवी जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लोग संस्कृति के वो तमाम सभी हम बातें जरूर करते हैं ताकि हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है हमारा जो जीवन का जो अंदाज है वे बेहतर रहे और समाज को एक दिशा और दशा देकर हम हमेशा समाज को सम्मान को आगे बढ़ावे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत जरूर करेंगे सभी विषयों को लेकर, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत भाई संदेश भी जरूर लेंगे और आपको लोकगीत भी जरूर सुनाएंगे। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये लोकगीत।

0: अंदाजे कौन सा प्लांट है?
1: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रहे तेरी समझदारी का फल।
3: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो,

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए और प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मैनो भाइयो, कार्यक्रम है ग्राम संसार और आज हम जो विषय जरूर लेकर आए हैं, चर्चाएं जरूर करते हैं। और आज का हमारा जो विषय विश्व शरणार्थी दिवस। जब विश्व शरणार्थी दिवस की हम बात करते हैं भाई, हर साल हम 20 जून को इसको मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो ये नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो भाई संघर्ष या उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोगों के साहस, शक्ति और सहनशीलता का सम्मान करने के लिए भाई ये जो दिन समर्पित हैं। और इस दिन से जुड़े कुछ बात महत्वपूर्ण करें तो भाई देखो, ये जो दिन हम क्यों मनाते हैं, अगर जो इसकी बात करें तो भाई ये जो दिन दुनिया भर के शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाई यही है कि युद्ध, हिंसा और अत्याचार के कारण विस्थापित हुए लाखों करोड़ों लोगों को जो सुरक्षा है, सम्मान है दिलाने के दिशा में जो वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करना है। और साथियों देखो, घर जब छोड़ा जाता है तो भाई क्या पता क्या उस दौरान सिचुएशन होती है, तो भाई उसके बाद जो भी कोई भी जाता है भाई देखो, एक दूसरे की हमने हेल्प जरूर करनी चाहिए। शुरुआत की बात करें तो भाई मूल

ये हम बात करें तो भाई देखो 1951 की जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं तो भाई इसमें शरणार्थी सम्मेलन भाई एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है जो शरणार्थियों के अधिकारों और मेजबान देशों के जो उनका जो दायित्व है उसको रेखांकित करता है। और गैर प्रत्यावर्तन के सिद्धांत की बात करें तो भाई इसके तहत किसी भी शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसके जीवन या स्वतंत्रता को गंभीर खतरा हो। और भाई देखो अगर जो घरों की बात करते हो भाई कुछ मजबूरी में ही घर छोड़े जाते हैं और इसलिए साथियों हमें एक दूसरे का सम्मान हमेशा बढ़ाना चाहिए और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाकर हमें समाज में एक संदेश देकर संसार में हम देश के सम्मान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों बात करी थी हमने विश्व शरणार्थी दिवस की और अब एक लोकगीत सुनते हैं और लोकगीत के बाद जो अन्य चर्चा हम योग की जरूर करेंगे क्योंकि भाई दुनिया भर में जो भारत देश ने योग का एक संदेश दिया है आज पूरा विश्व उसको अच्छी प्रकार से मना रहा है। तो महत्वपूर्ण चर्चाओं में बातचीत करेंगे लेकिन सुनते हैं ये लोकगीत।

0: बहनों भाइयों, कार्यक्रम है ग्राम संसार और जानकारी हमने जरूर दी थी शरणार्थी दिवस के बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी जरूर देते थे भाई। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर और भाई कल हम काफ़ी दिनों से जरूर इसमें लग रहे हैं दिवस के मनाने के लिए और भाई जो योग तो भाई 365 दिन हमने जरूर करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब हम 26 की बात करते हैं तो इसके तो साथियों ये अब योग की जिस तरह हम बात करें तो भाई योग का जो ये मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह के साथ साथ सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा देश के 100% स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और थीम के महत्व की बात करें तो भाई ये जो थीम है बढ़ती उम्र में शारीरिक शक्ति मानसिक स्थिरता और सक्रिय जीवन शैली को बनाए रखने में योग के महत्व को रेखांकित करता है और योग संगम की जब हम बात करते हैं आयुष मंत्रालय और माय भारत के तत्वाधान में भाई योग संगम पहल शुरू की गई है और यह विभिन्न संस्थान और समुदाय कॉमन योगा प्रोटोकॉल CYP पर आधारित सामूहिक योग सत्रों का एक साथ भाग ले रहे हैं और भाई इसमें योगों की जब हम बात करते हैं भाई पूरा परिवार हमें योग की तरफ जरूर ले जाता है, हमें ज़रूर जाना चाहिए और कल का जो दिन है साथियों सुबह 6 बजे जिस तरह कार्यक्रम शुरू होगा तो हमें भी योग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और मेरे साथ कुछ साथी भी है उनसे भी योग की बात हम कर लेते हैं। जी आपका क्या नाम है?
1: राम राम विनोद जी।
0: हाँ जी, तो योग की कुछ भाई किस तरह तैयारी कर रखी थोड़ा सा वो जरूर बताए।
1: बिल्कुल जी, योग तो हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो हमने प्रतिदिन करना चाहिए, विशेष तौर पर इसने 21 जून का दिन बनावा आपा।
0: हाँ, तो कुछ बड़का ने विकला ले जाओगे कल?
1: हाँ बिल्कुल, बड़का ने गिर ले जाओगे जी, उनने भी बेरा पटे भाई इसके के लाभ हैं।
0: हाँ, तो एक साथी और है भाई मारे गिल्ला आज स्टूडियो में, भाई क्या नाम आपका भाई?
2: मेरा नाम मंजीत है और योग दिवस की आपको भी अग्रिम बधाई। और
0: तो भाई कुछ तैयारी, कुछ टी शर्ट भी भाई, कुछ कुर्ते पजामे भी खरीद देंगे भाई योग के लिए, क्योंकि डेली कपड़ा मत करने चाहिए ना।
2: हाँ हाँ, मैंने व्हाइट टी शर्ट खरीदी है और ये एक स्पेशल डे होता है इसका।
0: तो सरकार की तरफ से भाई योग को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे, तो कल की क्या तैयारी कर रखी है अपने?
2: कल की यही तैयारी कर रखी है कि भाई जो मेरे बच्चे वो भी साथ में मैं भी जाऊंगा और हम तो लगभग लगातार करते रहते हैं हर रोज, क्योंकि हमारे शरीर को अष्टपुष्ट रखता है योग। योग हमारे लिए बहुत जरूरी है
0: जी। तो भाई योग की आप जरूर इसमें भाई जरूर पार्टिसिपेट करिए और योग की जब हम बात करते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत देश ने भाई हमेशा योग को आगे बढ़ाकर देश पूरे विश्व को एक संदेश जरूर दिया है और इस योग को आगे बढ़ाकर साथियों हम भी स्वयं ठीक रह सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जरूर मनाया जा रहा है और तब से अब तक भाइयों जो संयुक्त राष्ट्रीय प्राधिकरण सालाना आयोजन से बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े सहभागी जो आरोग्य आंदोलन में से एक बन गया और यह साझा योगाभ्यास के जरिए विभिन्न देशों संस्कृति और समुदायों के लाखों लोगों का भाई एकजुट करता है और 2026 के भाई जब बात करे थे IDY की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग, यह संस्करण राष्ट्रव्यापी भागीदारी है और इसकी भाई शुरुआत जरूर हो गई और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से 69वें अधिवेशन में पेश किया था और प्रस्ताव 1975 सदस्य देशों में समर्थन किया गया था और भाई ये जो 21 जून 2015 से भाई मनाया गया है और योग की बात करते हैं भाई पूरी तैयारियां जरूर लोगों ने कर रखी और आप भी जरूर भाई समय जरूर निकालें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान यदि आप रखते हैं तो भाई निश्चित तौर पर हम समाज के लिए जीते भी हैं और कहते भाई स्वस्थ अगर जो नागरिक है तो भाई देश भी स्वस्थ जरूर रहता है और लोगों को हमें जागरूक जरूर करना चाहिए और इस दिवस को महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ हमें जरूर भाग लेना चाहिए। और कई बार हम साथियों देखते हैं कि हम गांवों में भी भाई आयोजन जो एनजीओ है जो अन्य कार्यक्रम है इकट्ठे होकर हम इस दिन को मनाते हैं। और योग की बात करें तो भाई देखो योग पर भाई ज़रूर हमें आगे समाज को बढ़ाना चाहिए देश को बढ़ाना चाहिए और योग केवल कल के लिए नहीं हमेशा आपसे प्रण जरूर कीजिए और आप हमेशा 365 दिनों में भाई योग को आगे जरूर बढ़ाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक उम्मीद करते साथियों आप भी योग दिवस को आगे बढ़ाते हुए देश को भी मजबूत करेंगे और स्वयं भी मजबूत रहेंगे क्योंकि अगर जो आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है। और कहते हैं भाई सबसे बड़ी जो हमारी शक्ति ताकत है भाई हमारा जो शरीर ही है और कहते भाई निरोग जो व्यक्ति रहता है वही जीवन को आगे बढ़ाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त और एक उम्मीद करते हैं कि आप इस योग दिवस को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको ज़रूर दे देते साथियों आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का यूट्यूब चैनल भी है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के यूट्यूब चैनल पर जरूर डालते हैं। आप कभी भी उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं और लाइव कार्यक्रमों के लिए भी आप सीधा न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों भाइयों राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ, शाम के 7:30 होते हैं। अब प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान।

0: कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों और श्रोता साथियों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सैनिक भाइयों के लिए लाए हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। उससे पहले ये विज्ञापन।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
6: मंगल भवन मंगल हारी,
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
9: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
8: क्या ये जांच उपलब्ध है?
10: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
11: याद रखे, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
10: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
11: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
12: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
4: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
4: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

इसके साथ ही कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को जूली फिल्म में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोता साथियों, शाम के 7:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ सदाबहार गजलें, जिन्हें कलमबद्ध किया है निदा फाजली ने।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: करते हो ना। मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और इसके साथ ही कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के ठीक 8 बजते हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कालिका कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं रात्रि के ठीक 8 बजते हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

शामिल हो जाते हैं, एक कनेक्शन हम उसे जोड़ लेते हैं, है ना। और दूसरा ये कि मन का, रूह का, आत्मा का भी एक संबंध स्थापित करने लगते हैं, खास तौर पे अगर वो

अभी आपने ये गीत सुना इंसान और इंसान फिल्म से। बेहद खूबसूरत ये गीत अपने समय का रहा है और रफी साहब ने इसे अपनी आवाज में जो गाया, ये गीत सदाबहार गीतों की श्रेणी में आ गया। बेहद खूबसूरत ये गीत तस्वीर शब्द के ऊपर, महबूबा की तस्वीर के ऊपर ये गीत रफी साहब के मुंह से निकला। तो खैर, गीत कार्यक्रम में हम दोस्तों और भी आपके लिए लेकर आए हैं, और जहां तक गीतों की बात करें, हिंदी फिल्म जगत के अंदर तस्वीर शब्द पर कई गीत ऐसे आए। इश्क पर जोर नहीं, 1970 में ये फिल्म आई थी, महबूबा तेरी तस्वीर, ये गीत ये भी आपको सुनवा रहे हैं।

तो दोस्तों बेहद खूबसूरत गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को कलमबद्ध किया था। जो बोल थे आनंद बख्शी साहब के थे, बेहद खूबसूरत बोल थे और उतने ही खूबसूरत इस गीत के शब्दों के पीछे भाव थे। और इसको इतनी बेहतरीन संगीत से सजाया संवारा सचिन देव बर्मन साहब ने। सचिन देव सर बर्मन नाम ही काफी है, जिसे कहते हैं ना बेहद कमाल के, मतलब एक संगीतकार हिंदी फिल्म जगत में रहे हैं एस डी बर्मन साहब। एक दौर था जब उनके गीतों का पूरा जलवा हम सब ने उठाया हिंदी फिल्म जगत में। बहुत बड़ा नाम सचिन देव बर्मन का लिया जाता है संगीत की दुनिया में। तो दोस्तों कई बातें मिलकर हम तक पहुंचती हैं, जिसमें शायर के बोल होते हैं, गीतकार के बोल होते हैं, उनके पीछे भाव होते हैं, एक आवाज होती है जो हम तक पहुंचती है इन गीतों को, इन शब्दों को, इन बोलों को लेकर हम तक आती है। और उसे जिन संगीतमयी सुरमाओं के साथ हम तक पहुंचाया जाता है, जो संगीतकार अपने संगीत का जादू बिखेरते हैं, बहुत से वाद्य यंत्र अलग अलग भावों को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ाते हैं, जिससे सुनते ही हमारा सिर झूमने लगता है, मस्तिष्क में आनंद की घंटियां बजने लगती हैं। तो दोस्तों तब ये गीत हम तक पहुंचते हैं। तो तस्वीर शब्द अपने आप में जब हमारे सामने होता है तो हम बहुत कुछ उसके अंदर ढूंढने लगते हैं, उसे दिल से, मन के भाव से, पूरी गहराई या तन्मयता से उसे देखने लगते हैं, उसे आत्मसात भी करने लगते हैं, उसके अंदर हम खो जाने लगते हैं। एक तस्वीर के अंदर हम बहुत सी चीजें देखते हैं दोस्तों, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम किन भावों या किन चीजों से ज्यादा उस तस्वीर के अंदर जुड़े होते हैं। मनोवृत्ति अलग हो सकती है, लेकिन जो एक आत्मीयता का बोध उस तस्वीर के साथ हम अपना बना लेते हैं, वो जो दोस्तों एक कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब गीतकारों ने तो अपने शब्दों में, गीतों में अपना जलवा बिखेरा ही, संगीतकार ने भी उमदा संगीत में उसे पिरोया और फिर किनकी आवाज थी, उस आवाज का अपना ही एक जादू होता है। हिंदी फिल्म जगत में एक से एक गायक हुए हैं, सबने अपना अपना एक मुकाम हासिल किया। निश्चित रूप से योगदान तो बहुत बड़ा रहा ही है उनका, लेकिन जो मुकाम उन्होंने छुआ, आपस में देखा जाए तो किसी ना किसी युग में इस तरह का काम करने वाले लोगों के बीच में कोई ना कोई प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिलती है। आगे जाके जो प्रतिद्वंदिता खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है, वहां पर कोऑर्डिनेशन या सहयोग या तालमेल एस्टेब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है, और वो चीजें खूबसूरती को, संगीत की दुनिया को और ज्यादा बढ़िया बना देती हैं। एक ऐसी ही आवाज का हम जिक्र कर रहे हैं आपके साथ, आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत, आप उस आवाज का अंदाजा आप लगा सकते हैं।

दोस्तों यशुदास जी, कमाल की आवाज, कुदरत ने कुछ अलग ही आवाज दे के, इतनी मिठास भरी आवाज के साथ ये गीत आपकी नजर।

सावन को आने दो इस फिल्म का गीत यशुदास की आवाज में आपने सुना। तो दोस्तों, आवाज का भी अपना ही एक जादू होता है, वो आकर्षण अपने अंदर लेकर चलती है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब आपको सुनवाते हैं हम हिंदी फिल्म जगत का बेहद खूबसूरत गीत। माया फिल्म से ये गीत हमने लिया है। माला सिन्हा और देवानंद साहब के ऊपर ये गीत फिल्माया गया। 1961 में ये फिल्म आई थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सलील चौधरी का संगीतबद्ध ये गीत, लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बेहद शानदार गीत, बेहद खूबसूरत गीत। कितने अपनेपन के भाव लिए मजरूह साहब ने यह गीत लिखा होगा, कमाल की बात। सलील चौधरी साहब ने गजब का म्यूजिक दिया और माला सिन्हा और देवानंद पे बेहद खूबसूरती से यह गीत फिल्माया गया। आइए आनंद लेते हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, क्या बात है, आइए आनंद लेते हैं।

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं तस्वीर शीर्षक पर, और ये गीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो हम आपसे कार्यक्रम के आखिर में कुछ बातें ऐसी ही करेंगे जो कि गीतकारों ने अपने गीतों में, भावों में लिखा है और हम सबके साथ साझा किया है। अब देखिए, तस्वीर जब हम अपने सामने रखते हैं तो एक जो रिश्ता हम जोड़ के बैठते हैं वो बेहद सुंदर होता है। अगर हिंदी फिल्म जगत की बात करें तो गीतकारों ने, जैसा कि अमूमन होता है कि प्रेमी प्रेमिका के इर्द गिर्द वो बातें रहती हैं, तस्वीर की बातें उन दोनों के बीच में ही होती हैं, लेकिन कई बार गीतकारों ने कुछ शानदार गीत ऐसे भी लिखे जो आज भी एक इतना बढ़िया आनंद का भाव हमें देकर जाते हैं, उसकी क्या बात है, क्या मिसाल है उस बात की। आनंद बख्शी साहब का लिखा एक बेहद खूबसूरत गीत आपको, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, हम सभी गर्मी से थोड़ा बहुत परेशान भी है, आपको असल में तो नहीं लेकिन बातों ही बातों में कुछ ठंडी दुनिया में घुमाकर लेके आते हैं, इस गर्मी से आपको राहत दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आकाशवाणी के माध्यम से कश्मीर, यहाँ धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला वो क्षेत्र, वो एक इलाका जो निश्चित रूप से बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा लगता है, और स्वर्ग का दर्जा इसीलिए तो उसे मिला है क्योंकि वादियां, वहां की ठंडक, वहां के पहाड़, वहां की बर्फ, वहां के जंगल, सब कुछ कमाल है। कुदरत या ईश्वर साक्षात अपने रूप में वहां पर आया हुआ महसूस होता है। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के आखिर में बेमिसाल फिल्म के इस गीत का।

दोस्तों, आज कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सुन रहे थे तस्वीर शीर्षक पर कुछ सदाबहार फिल्मी गीत, और इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त नवीन को इजाजत दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। 9:00 अंग्रेजी में समाचार होंगे और 9:15 से आगे आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे।

0: नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के काउंसिलिंग नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को

0: सोचते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
5: We have been able to achieve that in the first.
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: They are all designed in India now.
4: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
4: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था यकीन। लता मंगेशकर की आवाज है फिल्म उलझन के लिए।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था उलझन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया, जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे। आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे

0: राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।
1: फिल्म

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

आविष्कार और गृह प्रवेश ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजते हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम में एक लंबी सूची आपकी फरमाइशों की हम तक पहुंची है। हम कोशिश करेंगे कि सभी श्रोता दोस्तों के नाम उसमें शामिल करें। तो खैर, कार्यक्रम शुरू करते हैं। पसंद

0: करने वाले दोस्तों के नाम गीत के बाद हम आपके साथ साझा करेंगे। और जो कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है वो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे। निदा फाजली के बोलों को सुरों में ढाला है उषा खन्ना ने और आवाज मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये विज्ञापन।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी आप तो ऐसे न थे, निदा फाजली के बोलों को सुरों में ढाला था उषा खन्ना ने। पसंद किया आप सबने। जो कार्यक्रम में सबसे पहली फरमाइश आज सुबह हमें प्राप्त हुई वो है बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूनत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूनत की। अगली फरमाइश कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों की। आप सब हैं गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, राजीव वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा। ये हमारे दोस्त हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आप सब हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। और ये संदेश हमारे दोस्तों का हमें मिला है लोकू कॉलोनी लाहौर लोहारू हरियाणा से। बिल्लू सिंह चिनारिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र, योगेंद्र, नरेंद्र और इनके परिवार के अन्य सदस्यगण। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज और बिट्टा बजाज, साहिल बजाज, ये हमारे साथी हैं। पूर्णा जंक्शन मुस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना भगत। रिमी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना सनावत से। गांव कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोणे और योगिता हांगोणे। सुनीता शिंदे, यशराज, प्रशांत, ऋषि, कृष्णा घोट के रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से। हलवाई मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, प्रवीण, रोजी प्रवीण, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर। धनुरु तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान बाबू। चंदन अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, आप सब हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आप सब हैं गांव बहरामपुर टैमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समरराज, आर्यन, आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। गांव रसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हम ये गीत जिसे हमने लिया है पत्थर के सनम फिल्म से। मुकेश की आवाज में गीत से पहले ये संदेश।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन मालियान सरधना मेरठ से हरदेव मिका बलविंदर विर्क जयतेग विर्क मिका विर्क आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल विनीत सोनम सदर बाजार कुरावली से। मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नवाज बेबी चाहत दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मेंडी सौरव साइन और निवान सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्वनी पद्मा टाकिज नेपा नगर मध्य प्रदेश से पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता गगन आरजू और गुड्डू जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से आप हैं अकरम हुसैन बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रूबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से। आप हैं मोहम्मद आसिफ खान निकहत परवीन और

ये संदेश हमारे इन साथियों का, उत्तम सिंह जगेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जगेल, कोहका भिलाई से। ये संदेश है राजेश सावले, पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, आप सब हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब। कमल बालूजा, मधु, सागर, आप सब हैं मजनू का टीला दिल्ली से। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। ये हमारे साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, दंतरेगी, भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़ से। ये हमारे साथी हैं सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव, अनारकली बाजार, जगराओं, पंजाब से। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जफीर अंसारी। राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, गायत्री पुजारा, साहिल पुजारा और रोहन, आप सब हैं शिव कॉलोनी रादौर, यमुनानगर, हरियाणा से। कस्बा सिसोली से आप हैं विजेंद्र कुमार जयजान और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव मुरादगढ़ इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो दोस्तों लीजिए अब सुनिए मेरे हुजूर फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में।

मेरे हम सफर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में अनंत बख्शी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। पसंद करने वाले दोस्त आप सब, पटियाली रोड गंज डुंडवाड़ा से आप, उत्तर प्रदेश से आप हैं, एम हलील कुरैशी, नुसरत बेगम, इजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी, बेबी अरीबा और हबीबा, ये हमारे साथी हैं। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीवाली, आप सब हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, आप हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से। और ये हमारे साथी हैं जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी, सुनैना भाकरे, संतोष भाकरे, सुकन्या और सविता भाकरे, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, सुधाकर, राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमार, सर्वद कुमारी, प्रणाली कुमारी, सानवी देशमुख और कुमारी हर्षदा देशमुख, आप सब हैं गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। और अगला संदेश हमारे इन साथियों का। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा, अदिति और वैभव शिंदे, ये हमारे साथी हैं। हतेंद्र दास असम से और गांव दूल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप सब हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक, ये हमारे साथी हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहर जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और ये साथी हैं हमारे छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश प्रांजलि, सोहम सदानंद और अंशुमन ओवी और विराज, ये हमारे दोस्त हैं। जिला खरगोन मध्य प्रदेश सनावद से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना। और ये संदेश हम शामिल कर रहे हैं। कृष्ण सपकाल शास्त्री नगर बीड शहर महाराष्ट्र से आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल का, गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके परिवार के सदस्यगण, गांव में डाकघर निमनाबाद जिला जींद से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रांजनू, अशोक, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पाली और सुनील पाठक। तो लीजिए दोस्तों, अब सुनिए आखिरी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को भी आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म में गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला था राहुल देव बर्मन ने। पसंद आप सब करने वाले एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल शालिनी ट्वांशी खेड़ा, सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा और मैक्स आप सब हैं। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से ये हमारे दोस्त हैं। वेद मिढा और अलखा मिढा नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का आप हैं सुरेश खुराना पप्पी, गांव फ्रांसी जिला हिसार हरियाणा से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ये हमारे साथी हैं। शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा जगांव जाखोद राजस्थान से। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, बने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ये हमारे साथी हैं। संबल कांकेर से फग्गुराम यादव, ज्योति और रजस्वी यादव। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक। गांव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। गगनदीप ठंडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी मामिका और वाणी ठंडी आप हैं। गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से ये हमारे साथी हैं। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोडाने, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन परिवार के अन्य सदस्य। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर राजस्थान से प्रेम सहारन, मोनिका, मनीष सहारन आप सब हैं। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश। कनेरा मोहल्ला पटियाला पंजाब से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। एसएम जावेद गुमला झारखंड से और सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया आप हैं। गांव पैजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से और ये हमारे साथी हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी और हेमलता। ये हमारे साथी हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसू से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। श्रोता दोस्तों लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

माफ कीजिए, ये गीत इस समय उपलब्ध नहीं है। मोहम्मद रफी की आवाज में आपको सुनवाते हैं अदालत फिल्म का ये गीत।

तो अदालत फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोता दोस्तों, अगला संदेश हम इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। अगला संदेश हमारे इन साथियों का। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कंबोज। चकला बाजार समाणा शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल संगीता, महक, सुनीता आरजू, हसमुखलाल बुलबुल, संजीव बंटी और इनके परिवार के सदस्यगण। ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। गौतम साहब का ये संदेश है जिसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन फिल्म का नाम और बोल जरूर लिखे हैं, तो कृपया अपना पूरा पता हमें जरूर लिखें। ये संदेश हमारे अगले साथी जो हैं वो हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। मुजफ्फरनगर से ये संदेश हमें मिला है जलालाबाद से, यूपी से, राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी, जीशान मंसूरी साहब का। और अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का तेलंगाना फुलगांव निजामाबाद से मोहम्मद वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकराम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल। अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का। आप सब हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य और मेघा मस्कीन का। आप सब हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। ये हमारे साथी हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर, घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। और ये हमारे साथी हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। और दोस्तों ये संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। झारखंड से है बड़ा बाम्बो, सुपई, साईगांव से देवेंद्र तांती, राकेश और प्रकाश तांती। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है दो कलियां फिल्म से। आइए आनंद लेते हैं मोहम्मद रफी साहब के गाए इस गीत का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें एफएम बैंड पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग

किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।